0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

भूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। भगवान शिव की उपासना हो रही है। भगवान शिव जिनके विषय में कहा कि कृपा ललित वीक्षणम स्मित मनोत्र वक्त्रांबुजम शशांक कलयोज्वलम शमित घोर तापत्रयम करोतु किमपि स्फुरत परम सौख्य सच्चिद बपू धरा धरसुता भुजोद वलयितम महो मंगलम। कि जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय और परम आनंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज

नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेष्टित है। वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज हम सब का मंगल करे। नील प्रवाल रुचिरम बिलसे त्रिनेत्रम पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धाम्बिकेशमनिशम प्रविभक्तभूषम बालेन्दुबद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। भगवान श्री शंकर का शरीर नील मणि और प्रवाल के समान सुंदर है। तीन नेत्र हैं, चारों हाथों में पास लाल कमल कपाल और शूल हैं। आधे अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित हैं। ललाट पर अर्धचंद्र हैं और मस्तक पर मुकुट शोभित हैं। ऐसे भगवान सदा शिव को बारंबार नमन है।

0: क्षाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यग बोध सुखाद वयम् हृदि सदा पश्यन्ति यम योगिन तस्मै शैलसुतांचितार्ध बपुसे शश्वन्नमस्तेजसे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। जत प्रजानमुत जेते धृतिश्च जज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु जस्मान्नृतज किंच कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तुः। जो मन विशेष ज्ञान जर जराने में समर्थ है, जो सामान्य ज्ञान भी कराता है, जो स्वयं चित्त स्वरूप होने के कारण अविनाशी तथा अंतकरण में सुख दुख का प्रकाशक है, जो जिसके न रहने पर कोई कार्य नहीं हो सकता, वह मेरा मंत्र शांत संकल्प वाला हो।

जो मन भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी पदार्थ को ग्रहण करता है, जिस मन में अग्नि होत्र आदि यज्ञ का विधान होता है, जिसमें होता होत्कृत मैत्र तथा वरुण आदि सातों देवताओं का आवाहन करते हैं, वह मेरा मन

0: मनः शिव संकल्पमस्तु हो। जिस मन से संकल्प रित साम यजूर के मंत्र उसी प्रकार स्थापित है जिस प्रकार धूरी में चक्के के आटे होते हैं, उसी मन में समस्त लोगों का संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। वह मेरा मन शांत संकल्प वाला हो। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम चंदसामपि मंगलानाम।

पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायणाय नमः। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज ट्यूसडे 11 अगस्त 2026 के इस पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जहां हमने विराम लिया था दोहा 53 वहीं से हम आज के इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं। माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया था, परंतु सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने उन्हें तत्काल पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता और प्रणाम कर पूछ करके कहे कि हे माता, भगवान शंकर कहाँ है। प्रभु के इन वचनों को सुनते ही माता सती अत्यंत लज्जित हो गई। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। उनके हृदय में अनेक प्रकार की चिंताएं उठने लगी। वे मन ही मन में विचार करने लगी कि मैं

सती माता विचारने लगी कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपनी अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी। भगवान शिव ने अनेक बार सती माता को समझाया, परंतु माँ सती ने अपने मन का करके श्री राम की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। और जब भगवान राम ने उनको पहचान लिया, सती माता तो समझ गई कि श्री राम

साक्षात परब्रह्म है, परंतु अब सती माता के सामने समस्या ये है कि भगवान शिव को क्या उत्तर देना है कि रामचंद्र जी कौन है।

0: सती माता जो उन्होंने दर्शन किया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इसको यहीं पर विराम दूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

ज्योतींषि सचते सषोडशी। आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत इस वेद मंत्र की व्याख्या, मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री। श्रोताओं, यह यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 36वां मंत्र है। इस मंत्र का भाव ये है, यस्मात् न जातः, उस परमात्मा से बड़ा और तुल्य श्रेष्ठ कोई न हुआ है, न कभी कोई होगा। उसको परमात्मा कहना जो सब भुवन सब पदार्थों का निवास स्थान, असंख्यात लोकों को उसमें वो प्रविष्ट हो रहा है, आविवेश, वही ईश्वर हम सबका स्वामी है, सब प्रजा को रमा रहा, सब प्रजा में वह परमात्मा रम रहा है। यहाँ देखिए त्रीणी ज्योतींषी शब्द आया है। त्रीणी ज्योतींषी, तीन ज्योति कौन सी मानी गई है? एक अग्नि है, दूसरा वायु है और तीसरा सूर्य है। ये तीन प्रकार की ज्योतियों को परमात्मा ने रचा है। सब जगत का व्यवहार और पदार्थ विद्या की उत्पत्ति के लिए इन तीनों को ही हमें मुख्य समझना चाहिए, अर्थात अग्नि के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारे शरीर में जठराग्नि है ना, कार चलाते हैं उसमें पेट्रोल रूपी अग्नि है, एरोप्लेन उड़ाते हैं उसके अंदर भी अग्नि चाहिए, वायु का कितना महत्व है, और सूर्य के बारे में आप और हम सब जानते ही हैं, सूर्य न हो तो हम इस संसार में जी नहीं सकते। ये तीन ज्योतींषी का मतलब है अग्नि, वायु और सूर्य, इनको परमात्मा ने रचा है। और फिर यहाँ पर एक शब्द और आया है, सचते सषोडशी, 16 कला जिसने उत्पन्न की है, इससे 16 कलावान ईश्वर कहलाता है। श्रोताओं, ये 16 कला कौन सी हैं? पहली है ईक्षण विचार, दूसरा है प्राण, तीसरी है श्रद्धा, चौथी है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, पराक्रम, तप, मंत्र, वेद विद्या, कर्म, चेष्टा और लोक, लोकों के नाम। इतनी कलाओं के बीच में सब जगत है। परमेश्वर में अनंत कला है, उसकी उपासना छोड़ के जो हम दूसरे की उपासना करते हैं वे लोग सुख को कभी प्राप्त नहीं होते, किंतु हमेशा दुख में ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ इस मंत्र में दो बातें विशेष रूप से कही गई है, त्रीणी ज्योतींषी अर्थात अग्नि, वायु और सूर्य को उसने रचा है। इसी से हम पदार्थ विद्या को जान सकते हैं। और 16 कलाएं कौन सी उत्पन्न की है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है, इस वेद मंत्र के बारे में बताया है, इसलिए इसको ऐसा जानना चाहिए। आपका बहुत

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो कृण्वन्त स्रवस्तयानि दुष्टरा नये से कोरयज्ञायां नावमारुहमीरमेव ते न्यविशन्त केपयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त वैदिक प्रेमियों को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपक्रम के उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, ऋग्वेद से लिया गया इस मंत्र में चार बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली, देव्य शक्तियों को आमंत्रित करके अपने पास जमा करने वाले महापुरुष प्रथम कोटि के मनुष्य होते हैं और संसार के साधारण व्यक्तियों से पृथक चलते हैं। दूसरे, वे संसार में ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं। तीसरे, वे यज्ञ रूपी नौका पर चढ़कर ही प्रथम कोटि के बनते हैं और उसी कारण अद्भुत काम करने की शक्ति उनमें आती है। और चौथी बात, जो इस यज्ञ रूपी नाव पर नहीं चढ़ पाते, वे जिस सांसारिक दलदल में फंसे हुए हैं उसी में अधिक से अधिक फंसते चले जाते हैं। वेदों में मन सहित हमारे इंद्रियों को देव कहा गया है। श्रोताओं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। संसार की किसी वस्तु का आकर्षण लेश मात्र भी उनमें नहीं था। धन धान्य से संपन्न गृह को तृणवत त्याग कर घर से निकल भागे। घोर कष्ट सहकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। बड़े से बड़े भय, महान से महान प्रलोभन, रंच मात्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सके। ऋषि के जीवन को देखिए, सारा संसार एक ओर था और अकेला दयानंद दूसरी ओर। सामान्य मनुष्य का जहाँ वह रहता है यदि विरोध बढ़ जाए तो उस समाज को, उस बस्ती को वह छोड़ने को तैयार हो जाता है और छोड़ भी देता है। किंतु ऋषि दयानंद जी के साहस और दृढ़ता को देखिए, जो भयंकर से भयंकर क्रूर अत्याचारों की परवाह किए बिना अपने पथ पर बढ़ते चले गए। श्रोताओं, गुरु विरजानंद से दीक्षा लेने के बाद ऋषि दयानंद जी को कार्य करने के लिए केवल 20 वर्ष मिले। इनमें से भी पहला दशक कार्य पद्धति के निर्धारण में, तपश्चर्या में और मौखिक प्रचार में व्यतीत हुआ। अंतिम दशक लेखन कार्य में अधिक लगा। इन 10 वर्षों में भी भाषण, शास्त्रार्थ, संघ का समाधान, आने जाने वाले वालों भक्तों से बातचीत और सारे देश से आने वाले पत्रों के उत्तर, इतने दैनिक कार्यों के साथ साथ मौलिक ग्रंथों का प्रणयन, विलुप्त वेदार्थ पद्धति के उद्धार के लिए वेद भाष्य जैसा दुरूह कार्य करते रहे। श्रोताओं, ये हैं उस देव्य पुरुष के चौंकाने वाले कार्य। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांते शांते।

0: अध्वर्यवो धर्मिणः सीष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्यानः केचित्।
1: सोम यज्ञ करने वाले विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषि अपने पवित्र कर्मों द्वारा वेद वाणी को सिद्ध कर लेते हैं। वेद के मंत्रों को नित्य उच्चारण करते हुए साल भर तक वैदिक कर्म में लगे रहते हैं। परिश्रम पूर्वक पसीने से तर कर अध्वर्यु यज्ञों की रक्षा करते हुए प्रकट होते रहते हैं। यज्ञ कर्मों की रक्षा हेतु कोई छुपा नहीं रहता। जैसे मेंढक अपने शब्द व ध्वनि से वातावरण को ध्वनिमय बना देते हैं, वैसे ही वर्ष पर्यंत चलने वाले सोम यज्ञ वातावरण को ध्वनिमय और पवित्रमय बना देते हैं।

0: ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जैसे मैं वेदोक्त सुमधुर वाणी उत्तम शिक्षा सहित सत्य और पदार्थ विद्याओं का प्रकाश करता हूँ, ताकि मेरी सत्य वाणी से सब जीवों का कल्याण हो, हे मनुष्यों सदा यज्ञ में प्रवृत्त हो। यज्ञों के माध्यम से आकाश, वायु और भूमि के सभी पदार्थ शुद्ध हो। विज्ञान और सही क्रियाओं से पुरुषार्थ करते रहें। पवित्र मन एवं उत्तम रीति से संपन्न किया गया यज्ञ धरती एवं आकाश में रहने वाले वायु, अन्न, वनस्पति, औषधि, जल आदि पदार्थ सबके लिए उपयोगी और कल्याणकारी होवें।
1: ओम उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय।
0: विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि दूसरे महाविद्वानों से मिलकर लोगों को वेदों और यज्ञ आदि उत्तम कर्मों से जागृत रखें। यज्ञ एवं वेदों का प्रचार प्रसार करें, जिससे यज्ञ आदि उत्तम कर्म करने वाले यजमानों की आयु, बल, प्रजा, पशु, धन धान्य, कीर्ति और सुख शांति की वृद्धि होवे। हे ब्रह्मणस्पति, उठो और यजमान का मार्ग प्रशस्त करो, ताकि उनकी आयु, प्राण, संतान, पशु, कीर्ति की रक्षा हो और उन सब की उन्नति हो।
1: ओ

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: नमस्कार आदाब कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनियन के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल पर हैं वो एम्प्लॉयज रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं खासतौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कर्मचारियों की बेहतर कार्य शर्तों के सिलसिले में बात करने के लिए निजी सेक्टर के कुछ मालिकों की नामंजूरी पर भी आत्मा शांतो ने बात की बेलोम्ब्र के एक होटल में बलात्कार की कोशिश संबंधी एक मामले का भी उल्लेख किया गया आत्मा शांतो के मुताबिक घटना के 3 दिन बाद उस विदेशी कर्मचारियों को वापस अपना देश लौटना पड़ा और शकी गुनहगार ने उससे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर चुप रहने की मांग की रेनियन टापू और मॉरिशस के बीच 156 किलो गांजे की तस्करी के मामले पर तहकीकात जारी कल गुलशन गोविंद ब्लैक रिवर अदालत में पेश हुए उन पर अस्थायी इल्जाम दर्ज हैं उनके वकील ने हिरासत में गांजे के होने और गांजा उगाने के आरोप के सिलसिले में अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए एक मोशन पेश किया रूबेन मोंगापिले ने बताया कि अगले 19 अगस्त तक गुलशन गोविंद पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD के करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई जो 12 जगहों पर है 1200 से ज्यादा मांगों को स्वीकार किया जा चुका है और करीब 300 परिवारों को अपने नए घर की चाबी भी प्रदान की जा चुकी है विदेश में कोलंबिया में आपात स्थिति की घोषणा की गई है अब तक मरने वालों की संख्या 111 तक पहुंची है बहुत सी इमारतें रह गई हैं जिसकी वजह से मौतों की संख्या के बढ़ने की आशंका है तो अभी के लिए बस इतना ही मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा दिन के दौरान घने बादल होंगे और आज रात बादल घेराएंगे पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में रह रहकर बारिश होगी हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पूर्व वाले लगूनों में इसी वजह से वहां के लगूनों में न जाने की दरखास्त है तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 16 से 18 अधिकतम 21 से 24 साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा आज सुबह 6:34 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:55 पर सूरज ढल जाएगा तो अभी के लिए बस इतना ही हमें इजाजत दीजिए नमस्कार और आदाब शुभ दिन आप सभी को
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station

देते नजर आ रहे हैं। ये इल्म कहां से मिला, ये कमाल कहां से मिला? फतवा नवेशी ये कोई मामूली फन नहीं है। मुफ्ती के लिए मुहद्दिस होना भी जरूरी है, मुफ्ती के लिए कई उलूम व फनून के अंदर माहिर होना भी जरूरी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत को ये उलूम व फनून कुछ असातिज़ा से मिले और बाकी ज्यादातर उलूम व फनून के हवाले से अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि बराहे रास्त मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने करम से आला हजरत को अता फरमाया। खुद आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार के हवाले से मैं एक वाकया आपके गोश गुजार करूं, उससे आप अंदाजा लगाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से आपने मैथमेटिक्स के मसले के हवाले से सुना होगा कि जब मैथमेटिक्स के एक मसले के हल के लिए वो जर्मनी का सफर करने वाले थे और उन्हें कहा गया कि इतने लंबे सफर से पहले बरेली के इमाम मौलाना अहमद रजा खां के पास चले जाओ, शायद ये तुम्हारे मैथमेटिक्स यानी एलजेब्रा का मसला वो हल फरमा दे। सर जियाउद्दीन उस वक्त मुस्कुराते हुए कहे थे कि भला इस मसले का हल एक आलिम, लेकिन हां जर्मनी जाने से पहले अगर बरेली का छोटा सा सफर कर लिया जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं। और जो मसले के हल के लिए उन्होंने अपने फन और अपने इल्म को कई मर्तबा आजमाया और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जब उस मसले का हल न मिला और बरेली के ताजदार की बारगाह में पहुंचे तो चंद मिनटों में आला हजरत ने उनके मसले का हल भी फरमा दिया, जवाब भी दे दिया बरजस्ता। उन्होंने सवाल पूछा, मौलाना ये तो बताइए ये इल्म आपने कहां से हासिल किया, इस इल्म में आपका उस्ताद कौन है? आला हजरत का जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स के चार उसूल सीखे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चार चीजें मैंने सीखी अपने वालिद से। और जब इस फन में मैं सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहा तो सुनो आला हजरत खुद क्या कहते हैं, मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, बेटे अहमद रजा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये इल्म तो खुद मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से तुम्हें अता कर दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं, बाप ने अपने बेटे कैफियत को देख लिया था और बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक इमाम अहमद रजा की रसाई और आला हजरत के दिल में रसूल आजम की मोहब्बत को खुद उनके वालिद बुजुर्गवार ने महसूस कर लिया था और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि बेटे ये सारे उलूम के हवाले से तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये तो बारगाहे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तुम्हें हासिल हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत की कामयाबी कुरान कहता है, वअंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही रहोगे अगर ईमान रखते हो। ईमान, आप कामयाबियों के हवाले से कुरान की आयतों का मुताला करो, पूरे कुरान के अंदर जहां जहां मुफलिहून फाइजून आलाउन इस किस्म की जितनी भी आयतें मौजूद हैं उन सारी आयतों को पढ़ डालो और उन आयतों की रोशनी में इमाम अहमद रजा की जिंदगी को पढ़ो, उसका जायजा लो, उसका मुताला करो तो पता चलेगा कि कुरान ने जिन लोगों की कामयाबी के हवाले से जिन औसाफ की बुनियाद पर बशारत अता फरमाई थी वो सारी की सारी खूबियां अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आला हजरत अज़ीमुल बरकत में रख दी थी। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान कहता है وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا।

जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, देखिए इताअत दो तरीके की होती है। एक इताअत का ताल्लुक यूं ही होता है, उसमें मोहब्बत शामिल नहीं होती, और एक इताअत का ताल्लुक मोहब्बत के साथ होता है। यहां जिस इताअत का जिक्र है, इस इताअत के अंदर मोहब्बत शामिल है। एक मुलाजिम सेठ की इताअत करता है, बात मानता है, लेकिन सेठ जैसे ही चला गया तो पीछे से गालियां देता है, परेशान कर रखा है इसने, चैन से जीने नहीं देता, जब आता है कुछ ना कुछ ऑर्डर चलाता है। तो बात तो सेठ की मानता है लेकिन मोहब्बत के साथ नहीं मानता। यहां जो इताअत अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से करने का हुक्म दिया गया और जिसकी बुनियाद पर कामयाबी की बशारत दी गई, वो इताअत बिल मोहब्बत है। यानी एक बेटे को मां अगर कहे बेटा जरा ये काम कर लो, तो बेटा काम भी करेगा, साथ में दिल में ये मोहब्बत भी होगी कि मेरी मां ने कहा, इसका दिल में कैसे दुखाऊं। तो अब उस मां की इताअत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी विलायत का ताज अता कर देता है। तो कुरान को जो इताअत मतलूब है, वो इताअत बिल मोहब्बत। अब आला हजरत की जिंदगी को देखो। अब यहां आज तक शायद आपने इस मामले को नहीं समझा होगा कि मोहब्बत कहते किसे हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत जो है ना, इसका मादे इश्तिकाक हब्बतुन है, और इसके मानी होता है दाना। क्या होता है, क्या होता है? हब्बा के माने क्या होता है? दाना। दाना जमीन के अंदर रख दिया जाता है और फिर जब उस पर बारिश गिरती है, जब उसकी सही तौर पर परवरिश होती है, तो उसी दाने के जरिए कोपलें नमोदार होती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। तो अब वो दाना जो अंदर होता है, उस दाने को जब उसकी ग़िज़ा मिलती है, तो उस दाने की वजह से और दाने के अंदर से जो चीज निकलती है वो होता है नतीजा। इसी तरीके से मोहब्बत हब्बा से बना है, यानी दिल के अंदर, दिल के अंदर कोई चीज रखना, कोई दाना रखना, कोई जज्बा रखना मोमिन के दिल में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रख दो। और इस मोहब्बत की पहचान और इसकी अलामत क्या है, तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाह वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अब दिल के अंदर मोहब्बत के दाने को आपने रख दिया, जब जब अल्लाह का जिक्र होगा, रसूल आजम की तारीफ होगी, दिल का गुंचा खिल उठेगा, दिल में सुरूर पैदा होगा, दिल में खुशियां अंगड़ाइयां लेने लगेंगी, दिल में मोहब्बत फूटने लगेगी, और फिर दिल की कैफियत यह होगी कि यह दिल झूमता रहेगा। तो किसी शायर ने कहा, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ। दिल जगा है मोहब्बत की, दिल जगा है उस दाने को रखने की, और जिस दिल के अंदर आकाए करीम की मोहब्बत कितनी बैठ जाए, तो खुद हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नास अजमईन। जब तक के मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे माँ बाप और सारे इंसानों से ज्यादा न पैदा हो जाए, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। तकाज़े मोहब्बत यह है कि महबूब के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त न किया

ये तकाज़े मोहब्बत है। इसके हवाले से ज़ाब्ता फरमाया गया, हुब्बुका शैया युमी व युसिम, इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके ऐब देखने से आंख अंधी हो जाती है और उसके ऐब कहने से जबान गूंगी हो जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम है इसको मोहब्बत ने अगर गुस्ताखों के लिए अपना कलम उठाया तो ये तरीका आला हजरत ने अपने घर से नहीं सीखा था, ये कुरान से सीखा था। आज ये मैं आपको बताऊं, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे अफराद भी आते थे जिनके दिलों के अंदर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुदूरत थी और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाना ये उनकी फितरत सानिया थी। जानते हैं आप, वो जब महफिल के अंदर गुफ्तगू करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते राइना या रसूल अल्लाह। अब कहने वाले की नीयत, जब सहाबा कहते थे उनका नजरिया कुछ और था, मुनाफिकीन कहते थे उनका नजरिया कुछ और था, तो अब ये बेअदबी उस रब को गवारा न हुई जो रब अपने महबूब से मोहब्बत करता। कितनी मोहब्बत में आपको बताऊंगा। तो महबूब की शान के अंदर मामूली सी बेअदबी रब ने गवारा न किया, फौरन आयत करीमा नाजिल हो गई, या अय्युहल लदीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलू ज़ुरना। गोया पता चला बेअदबी मुस्तफा को गवारा न करना ये रब की सुन्नत है। सरकार की बेअदबी को गवारा न करना ये रब की सुन्नत है और अदब मुस्तफा की तालीम देना यह भी रब करीम की सुन्नत मुबारक है। और आला हजरत ने यह काम किया, आला हजरत ने यह काम किया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, कुरान की आयतों का मुताला करो तो जा बजा हुजूर की बेअदबी से कुरान रोकता है। अल्लाह अकबर, साहबा मचल जाते थे, झूम जाते थे जब आयतों की गहराई में जाते, आयतों की डीप में जाते तो उनका ईमान मचल जाता था और बरजस्ता पुकार उठते थे, या रसूल अल्लाह आप जैसा अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं फरमाया। अगर आज बरेली के ताजदार के फतवे के मुताबिक कोई अगर या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारता और या रसूल अल्लाह कहकर पुकारता है तो लोग कहते हैं कि इस तरह से पुकारने में क्या जाता है। मैं कहता हूं ये अदब भी हमको कुरान ने सिखाया। कुरान कहता है ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बादकुम बादा। रसूल को इस तरह न पुकारो जैसा एक दूसरे को पुकारते हो। आप जरा सोचो, बारगाह रसूल का अदब कुरान सिखा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत ने यह अदब अगर सिखाया है तो अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, उन्होंने कुरान की गहराई का मुताला किया, कुरान के डीप में गए और उसके बाद कुरान की जो तालीम थी वो तालीम उन्होंने अता फरमाई। लोग अमाल के ऊपर फख्र करते हैं, लोग इबादत और रियासत पर और तक्व तहारत पर नाज करते हैं। सुन लो, इबादत और रियासत का सवाब अपनी जगह पर, लेकिन जरा इबलीस की तारीख भी पढ़ लेना। सजदों की कमी नहीं थी, इबादत की कमी नहीं थी, लेकिन बेअदबी ने उसे कयामत तक के लिए लानत के तोप पहनने पर मजबूर कर दिया।

आला हजरत आखिर क्यों हुजूर का अदब सिखाते हैं? और हुजूर ही का अदब नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का अदब भी सिखाते हैं, उनसे मंसूब हर चीज का अदब सिखाते हैं, आखिर क्यों? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बादकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उनके सामने तुमने अपनी आवाज को बुलंद किया तो तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम तो यह समझते होगे कि दामन में नेकियों का अंबार है, लेकिन एक बेअदबी ने, सवाल पूछो मौला से मेरे करीम, बेअदबी तेरी तो न की थी ना, नमाज तेरे लिए, रोजा तेरे लिए, हज तेरे लिए, जकात तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, खैरात तेरे लिए, और आवाज नबी की आवाज पर बुलंद हो गई तो सारे आमाल बर्बाद क्यों कर दिए गए? तो जवाब मिलेगा नादान जो मुस्तफा का गुस्ताख हो उसका कोई अमल मेरी बारगाह में कबूल हो ही नहीं। और हद फरमाया गया, हद और जब्त में फर्क है। अगर जब्त फरमाया जाता तो जब्त की हुई चीज छुड़ाई जा सकती है, लेकिन हद की हुई चीज कोई एतबार से छुड़ाने की कंपोजिशन में होती ही नहीं, यानी सब तुम्हारा बर्बाद हो गया। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत सिर्फ बारगाहे रसूल ही के अदब की तालीम नहीं देते बल्कि जमीने मदीने के भी अदब की तालीम देते हुए कहते हैं हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला। अरे अगर आला हजरत ने तुम्हें अदब की तालीम दी है तो वजह सबसे बड़ी यह है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारे सजदे भी महफूज रह जाएं और तुम्हारी इबादत भी बारगाहे सबदियत के अंदर मकबूल रहे। बड़ा एहसान है आला हजरत का, मैं हैरान हूं। मैंने जब बरेली के ताजदार की जिंदगी को एक रहनुमा की हैसियत से और उनकी जिंदगी पाक से कुछ उसूल अखज़ करने की हैसियत से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो खुदा की कसम मुझे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत से मुतालिक एक बुजुर्ग का कौल पढ़ करके मेरे कलेजे को काफी ठंडक महसूस हुई। और वो कहते हैं, क्या खूब कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत के इश्क रसूल को देखकर सहाबा के दौर की याद ताजा हो गई, सहाबा के दौर की याद ताजा हो गई। सहाबा उस दौर के अंदर इस्लाम के फरोग और इस्लाम की तरवीज और इशाअत में मेहनत और मशक्कत कर रहे थे। जो दौर जुल्म का था, ज्यादती का था, तूफान का था और चौतरफ से फरोग इस्लाम के लिए रोड़े अटकाने वालों का दौर था, ऐसे दौर के अंदर सहाबा के पास कौन सा हथियार था, कौन सा सरमाया था? तो सहाबा की सारी जिंदगी उठा करके देखो तो एक चीज नुमाया तौर पर आपको मिलेगी और वो चीज क्या है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने इश्क़ रिसालत मार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया में लहरा के रखा और फरोग इस्लाम के लिए यही वो जज्बा था।

0: जिस जज्बे की बुनियाद पर लोग सहाबा की दावत को कबूल करते हुए नजर आए, और दुनिया अगर लर्जा बरंदाम थी तो इसी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत।
1: आला हजरत की कामयाबी का राज सामीन अभी आप समाप्त कर रहे थे अज अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी दामत बरकतु मालिया। वसुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। सामीन आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इबादत जहद और तकवा का हसीन नमूना है। आप रातों को नवाफिल तिलावत कुरान और जिक्र इलाही मशगूल रहते। शरीयत मुतहरा की पाबंदी आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का नुमाया वस्फ रही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के हुसूल में गुजारी और अपने किरदार से ये साबित किया कि इल्म की हकीकी जीनत तकवा और अमल सालेह है।

आला हजरत ने अपने दौर में उम्मत को दरपेश फिक्री और एतकादी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की सही तालीमात को आम किया और लोगों को एतदाल, मोहब्बत और अख़वत का पैगाम दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी काविशों ने बरसगीर के मुसलमानों में दीनी शोर पैदा किया और उन्हें अपने अकायद व इबादात के बारे में दुरुस्त रहनुमाई फराहम की।

अला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का सबसे नुमायां पहलू सामीन इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रही। आपकी तहरीरों, फतवा और शायरी में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की झलक नुमायां नज़र आती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत और अदब से वाबस्ता रहने का दर्स दिया। आपका मशहूर नातिया कलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम आज भी दुनिया भर में अकीदत मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है। सामीन, पेश खिदमत है ये लाजवाल कलाम और इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनोर को इजाज़त। आप सबको उर्स आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 94.6 98.2 मेगाहर्ट्ज ऑरेंज फ्री
1: सकाळ बीट्स
2: सकाळ बीट्स

शक्ति। मंगलवार 11 अगस्त रेडियो मनोरंजन पर हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर आप सबकी सेवा में हम आ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और अभी से लेकर दिन के 11:30 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओं, कहते हैं भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मन को शांति और जीवन को दिशा प्रदान करती है। तो चलिए साथ मिलकर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं भगवान गणेश की आराधना के साथ।

श्रोताओं, कहते हैं जब हम अपने मन में ईश्वर को स्थान देते हैं तो हमारी हर परेशानी, फिर चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो या कितनी छोटी क्यों ना हो, हर परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। हर परिस्थितियाँ जो विपरीत थी वो अनुकूल होने लगती है और हर मार्ग जो कठिन लगता था वो सरल होने लगता है। तो बस ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दीजिए और किस तरह से ईश्वर की कृपा हम पाकर अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं, ये जो है ईश्वर ही हमें बता सकते थे। इसलिए ईश्वर के प्रति ये जो हमारा विश्वास होता है ना, उसे हमें कभी खोने नहीं देना चाहिए। आज मंगलवार है तो आइए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम हनुमान जी की आराधना करते हैं।

श्रोताओं, आजकल हम श्रवण मास मना रहे हैं। श्रवण मास में पूजा प्रार्थना का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान शिव की आराधना होती है, शिव परिवार की आराधना होती है। भगवान शिव कहते हैं इतने भोले हैं कि एक बेलपत्र और एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जो है जहाँ पर शांति का प्रतीक है, वहीं संहार का भी प्रतीक है। परिस्थिति अनुसार एक मनुष्य को किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, शांत रहकर किस तरह से अपने हर एक निर्णय को लेना चाहिए, और जब समय आए कि अपनी बात सच्चाई से सामने रखे, लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाए, लोगों तक हर एक परिस्थिति का सामना हम डट कर करें, ये सब भी भगवान शिव हमें सिखाते हैं। तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और श्रवण मास की हार्दिक मंगल कामनाएं आप सभी को कहते हैं।

श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं हर दिन एक नया आरंभ होता है और हर एक दिन भगवान का धन्यवाद करते हुए आरंभ करना चाहिए और दिन का समापन भी भगवान का जो है ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के हम अंत तक आ गए हैं। आप सबने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः हमारी आपकी भेंट होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

我是今天的节目主持人金，今天我为大家准备了好几首优美动听的歌曲，下面让我们一起来收听第一首。

0: 众朋友，今天的汉语普通话好歌送给您的节目将要接近尾声了，主持人又要跟大家说再见了，非常感谢您的陪伴，非常感谢您的收听。好，我们在下次同一节目时间再见。
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
4: नमस्कार आदाब से मोहतें भी जुकाप में आज सुनी कार्रवाई चलाई जिसके दौरान रक्त तस्करी के जुर्म में 42 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। अफसरों को 10 पैकेट मिले जिनमें पत्ते थे गांजे का शक है। ड्रग्स की कीमत 4.5 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। आजसू अपनी जाँच जारी रख रही है। ग्रेट ब्रिटेन में काम करने वाले दो मोशन माहिर मॉरिशस में ऑफ्थाल्मोलॉजी क्षेत्र में तरक्की लाने का मकसद रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्क्रीनिंग की जा सकती है और माइक्रो इम्प्लांट से ग्लूकोमा का इलाज किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मॉरिशस को 10 इम्प्लांट्स भी दिए और कल उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के वास्ते पोर्ट लुई में ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बाधाएँ उत्पन्न करने वाले लोगों को अगर काम नहीं करना है तो वे अवकाश ले सकते हैं क्योंकि वे जनता की बेहतर सेहत चाहते हैं। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD की करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई जो 12 जगहों पर हैं। 1200 से ज़्यादा मांगों को स्वीकार किया गया और करीब 300 परिवारों को अपने नए घर की चाबी मिली। और जहां तक NHDC के मकानों की बात है, 5 परियोजनाओं के तहत 185 इकाइयों पर काम किया जा रहा है। इन इकाइयों के लाभार्थियों की अलग अलग कहानी है जिन्हें बरसों बाद एक छत नसीब हो रही है। और फिलहाल भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं और आवास के क्षेत्र की ज़्यादा जानकारियां दे रहे हैं। विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में हमास के निरस्त्रीकरण के सिलसिले में शांति परिषद के रोड मैप को ठुकरा दिया।

0: हैं। व्हाइट हाउस ने उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज किया और कहा कि वो अपना अभियान जारी रखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। शमेल कर्क एस कॉन्टों वाकवा में 77 साल की 77 years old श्रीमती सुमती लाल बहादुर जो कमला के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनके घर स्कूल लेन कैसगांव तो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोदाए सैंपिये या बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट हाफ पास्ट 2 PM। मोसल मोगामालिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप में 44 साल के 44 years old जनाब मोहम्मद शकील साहिब जो शकील के नाम से ज्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दो बजे इनके घर मुसलमो रामालिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिकाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM। रॉयल रोड पेटिट रिविया में 76 साल के 76 years old श्री जयदत्त जीवुत जो जय के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे रॉयल रोड पेटिट रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। नंबर सेवन गोवा स्ट्रीट प्लान वेयर में 52 साल के 52 years old जनाब सनाउल्ला बोयराजी जो सनाउल्ला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज डेढ़ बजे इनके घर नंबर 7 गोवा स्ट्रीट प्लान वेयर से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए अलीहसान मस्जिद और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 1 PM। एवेन्यू कोबिजो मोतीदा में 90 साल की 90 years old बीबी राबिका रामपत पैदाइशी नाम बाकोराली जो आफेज के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज ढाई बजे इनके शौहर जनाब अब्दुल सातो रामपत के घर एवेन्यू कोबिजो मोतीदा से उठाकर दफनाने के लिए मेजिन कौदी मास्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 2 PM। एवेन्यू राजकुमार लेन बियातो कात्रोबोन में 79 साल की 79 years old श्रीमती चंद्रावती मेराई पैदाइशी नाम जियावक जो लोलो के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे के घर राजकुमार लेन बियातो कात्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 1 PM। सेंट फ्रांसवा कालूजीन में 84 साल की 84 years old श्रीमती उमाबती बारा पैदाइशी नाम बाजो जो उमा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे के घर सेंट फ्रांसवा कालूजीन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 2 PM। रॉयल रोड मोड ऑस्ट्रेलिया में 83 साल के 83 years old श्री महेंद्र सिंह भवानीपेक जो दाऊदा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर रॉयल रोड मोड ऑस्ट्रेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोड ऑस्ट्रेलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 25 कैपिटन पोंट्रे सेंट क्रॉ में 56 साल के 56 years old श्री जयराज मुसेन जो सुंदर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनके घर कैपिटन पोंट्रे सेंट क्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुइले वाले दे प्रेत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Suhana Safar.
2: मंगलवार 11 अगस्त घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:08 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का स्वागत है। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम के साथ। हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए और आज अभी से लेकर दोपहर के 3

बजे तक जो है हम आपके साथ साथ रहेंगे. सो आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं. सवेरे से दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और अभी तो लंच का टाइम भी हो रहा है, हो चुका है. तो चलिए बुना पीछे शुभाहार और जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो 3 घंटों के इस म्यूज़िकल सफ़र में साथ देने के लिए हो जाइए तैयार. कुछ खूबसूरत गाने तराने आपके लिए चलाएंगे, साथ मिलकर इन गानों को गुनगुनाएंगे, साथ ही में इंक्लूड करेंगे आपके डेडिकेशंस भी. नॉट टू फॉरगेट 402-8070 है नंबर हमारा. यू कैन इवन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर. एंड थोड़ी देर में हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, सो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं. और चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आंधी फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ.

0: सुहाना सफर।
1: चले ब्यूटीफुल सा तराना मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगी है जवानियां। तलत महमूद साहब और लता जी की आवाजों में ये था एक बड़ा ही खूबसूरत सा एवरग्रीन तराना। कभी कभार काफी दिनों बाद जब ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं तो मानो हम एक अलग ही जहान में चले जाते हैं, है ना। तो चलिए सुहाना सफर ये प्रोग्राम है, आप हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ पर हम भी रेडियो के जरिए आपसे कनेक्टेड है। और ये जो गानों का सिलसिला है आज तो चलेगा 3 बजे तक। सो नॉट टू फॉरगेट 4028070 यू कैन कॉल अस और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर भी। थोड़ी देर में टिकटॉक पर हम लाइव भी होंगे और आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर आपके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। हेलो लवली सुमी जी, सच में आप आ गए तो नूर आ गया। अरे वाह माधुरी जी, इस मैसेज ने तो हमारा दिन बना दिया। इनफैक्ट हमारे सुनने वाले, हमारे लिसनर्स जब हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो मानो हमारे प्रोग्राम में नूर आ जाता है, चार चांद लग जाते हैं। तो ये मैसेज इक्वली अप्लाइज टू यू ऑल्सो। तो थैंक यू इस प्यार भरे मैसेज के लिए, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। बस यूँ ही हमें आपका साथ मिलता रहे। और ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम यशुदास जी और आशा जी की आवाज़ों में छोटी सी बात से लिया गया।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर ये प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ सुमी। हर ट्यूसडेज को सुहाना सफर इस प्रोग्राम में हमारी आपकी मुलाकात होती है और आज भी हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। गानों का ये जो कारवा है शुरू हो चुका है, सो कोई पुराना गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं या बस कोई पुराना तराना सुनना चाहते हैं, सो जुड़ जाइए हमारे साथ रेडियो मनोरंजन पर इन या सुहाना सफर। इस समय किरण पुरी जी वैंकूवर कनाडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। किरण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। गाना जाएगा जीजी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी कला राम कारीगर और आपके सभी फैमिली के लिए, आपके सभी दोस्तों के लिए जो इस समय कनाडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। और चलिए रेडियो के साथ साथ इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, सो हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना माधुरी जी आपके नाम करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग द लाइव। वी हैव आयशा, थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर लवली मैसेज। आई होप आप अच्छी हैं। विद्यानंद गोपाल जी, हाय, कैसे हैं आप? केशनी कुमार, हेलो केशनी जी। वी हैव लक्ष्मी जी, नमस्ते लक्ष्मी जी, हाउ आर यू? नाज अब्दुल जी, अरे आज भी आप हमारे साथ हैं, आप हमें पता है आप फीजी से हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाज जी, आप कैसी हैं? शायद आप फीजी से ही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो हेलो माधुरी जी। करुणा राम जी, हाय, कैसी है आप? हाय परी, कैसी हो परी?

0: परी बुलाओ या उषा बुलाओ। अब्दुल रिशाद जी हेलो, कैसे हैं आप? विद्यानंद जी थैंक यू फॉर शेयरिंग द लाइव। लाल परी, यस आज वो परी नहीं, आज मैं परी हूँ, है ना। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने लंच कर लिया, तो चलिए लंच कर रहे हैं या लंच करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी को बुना पीछी हम कहेंगे। और यहाँ पर अगला गाना आप सभी के नाम, वी हैव आरती, रघु, जगदीश जी, हेलो जगदीश जी, नमस्ते, कैसी है आप? हाय लक्ष्मी जी, कुर्सी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है और आपका काम काज भी अच्छा चल रहा होगा। वी हैव शबी, हाय डिया, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, विशिंग यू लॉट्स ऑफ करेज, आपको भी। और ये अगला तराना आप सभी के नाम।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि हमारा ये जो हमारी जो लाइफ है ये भी एक सफर ही है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को

जानते हैं, और ये जो सफ़र है यादों में जो है बदल जाता है, और कल को ये यादें ही मानो कभी कभार जीने का सहारा हो जाते हैं। और ये गाने भी इनकी बात करें तो हमारी यादों में ही बसे हुए हैं। आज से न जाने कितने साल पहले, कितने दशक पहले ये गाने बने थे, रिलीज़ हुए थे, लेकिन आज भी इन्हें सुनते हैं तो मानो एक अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना जाएगा आप सभी के नाम। नमस्ते जी, कैंसिंगटन में हूँ। गाना जाएगा देवांश के नाम और आपकी दादी के लिए भी। ऑल राइट, घरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, ये गाना आपको सुनना है परी जी। चलिए कोशिश करेंगे इस गाने को चलाने की। चलिए यहाँ पर इस समय हमारे साथ प्यारी सी हमारी परी भी जुड़ चुकी है, जो टिकटॉक पर तो हमारा साथ दे ही रही है, साथ ही व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर रही है। तो थैंक यू सो सो मच। मतलब कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पर रेडियो मनोरंजन अवेलेबल है, आप वहाँ पर सभी बड़े प्यार से जुड़ते हैं, और आप लोगों के साथ जुड़कर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आपका नाम अच्छा दिया, क्या है आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में क्या स्पेशल है। मेरा बर्थडे नहीं नहीं मेरा बर्थडे अभी नहीं है, मेरा बर्थडे अभी बहुत दूर है ना कुसुम। चलिए आप लोग तब तक गेस करें, आप लोगों को पता चल जाएगा। हेलो ऋषिका जी, कोरा कागज का गाना हो जाए। हाय वेदना जी, कैसी है आप? कोरा कागज का कौन सा गाना? कोरा कागज था ये मन मेरा, इज इट? और चलें यहाँ पर वेदना जी, थैंक यू, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती है, कटरबोन से हमारा साथ देती है। निज़ाम बहादुर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तुम साथ हो जब अपने, और राइट, थोड़ी देर में इस गाने को हम चलाएंगे। अभी के लिए आराधना फिल्म का ये तराना हो जाए, किशोरदा लता जी और साथियों की आवाज़ों में। कोरा कागज़ था ये मन मेरा।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर आफ्टरनून के 12:40 हो रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर ये प्रोग्राम है और अगला गाना कालिया फिल्म का तराना होगा तुम साथ हो जब अपने कल्याणी जी ये गाना जाता है आपके नाम बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए सुबी जी आपकी ओर से गाना जाएगा आपके हस्बैंड धीरज और आपके बेटे दिविज के नाम जो गाना आपने मांगा है थोड़ी देर में उसे हम चलाने की कोशिश करेंगे निज़ाम बहादुर जी आप भी हमारे साथ कनेक्टेड है आपने भी एक गाने की रिक्वेस्ट की है इन अ वाइल हम इसे अपने प्रोग्राम में शामिल ज़रूर करेंगे अभी के लिए ये गाना आपकी वाइफ सबीना के नाम हम करते हैं रेखा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए वी हैव मोहबिया जी सूरज सजादा जी मैंने अच्छे से कहा आई होप आपका नाम आप हमेशा ट्रियोले से हमारा साथ देते हैं तो थैंक यू सो मच रंभा जी विलनुआ से हमारे साथ जुड़ी हुई है और बाकी जितने भी लिसनर्स हमारे साथ हैं जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ हैं बहुत बहुत शुक्रिया और ये गाना चल पड़ा कालिया फिल्म से लिया गया RM3 Radio.

0: ना सफर हो ना सफर।
1: और चलिए यहाँ पर सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम है और बहुत ही कम समय में इस प्रोग्राम को आप लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना साथ मिला है कि हम क्या कहें। ऐसे प्रोग्राम बस हम चलाते रहे और आप उस ओर से हमारा साथ देते रहे, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है भला, है ना। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, कस्म वादे निभाएंगे हम। ये जो टाइटल ट्रैक है, निज़ाम जी और सबीना जी आप दोनों के नाम, लीला रघुबर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रोहित यादव जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, वी हैव सुल्ताना मथी, कवि शिरीष जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। आपके सितारे प्रोग्राम, आपके सितारे प्रोग्राम मंडे और ट्यूसडे को चलता है शाम के 4 से 6 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और कल हमने जो है सुनील शेट्टी पर प्रोग्राम किया था, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम सुनील शेट्टी जी का गाना नहीं चला पाएंगे क्योंकि सुहाना सफर ये जो प्रोग्राम है इसमें पुराने गाने चलते हैं, तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट लक्ष्मी जी आपने एक गाने की फरमाइश की है, थोड़ी देर में हम जो है इसे

0: बनाने की कोशिश करेंगे। सुभी जी, आई होप आपने अपने इस लंच को एंजॉय किया होगा जो आपने हमें लिख कर भेजा है। और चले यहाँ पर मिस्टर खान यहाँ पर हमारे साथ है। हेलो जी, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ऑल राइट कुसुम, थोड़ी देर में इस गाने को हम ज़रूर शामिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में। अभी के लिए कस्मे वादे फिल्म का ये जो टाइटल ट्रैक है, राजेश शर्माया आप दोनों के नाम हम करते हैं। डी कुबलाल जी, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड है और डी आपकी ओर से गाना जाता है आपके हस्बैंड कुशान के नाम, जो इस समय काम कर रहे हैं और आप उनको कहना चाहती है दैट यू लव हिम। आई होप डी आपका मैसेज आपके हस्बैंड तक पहुंच गया होगा। रुमिता जी, हाय रुमिता जी, कैसी है आप? यूज़र 2456, वन सॉन्ग फॉर मी। और राइट, अगला गाना आपके लिए रुमिता जी, अगला गाना आपकी ओर से सभी दशरथ परिवार और सभी गुजा परिवारों के नाम, और ये गाना चल पड़ा।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: यकीनन जब भी मिलने का मौका हमें मिलेगा हम आएंगे यहाँ पर आपसे मिलने, आपका साथ देने और ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्रामों के जरिए आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो सो मच। इस समय रॉक गंगाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने कहा कि हो सके तो ये गाना हो जाए कृष्णा धरती पे आ जा। तो चलिए आपने फरमाइश की और हमने आपकी फरमाइश को पूरी करने की छोटी सी कोशिश हमारी। यही गाना रोशना आपके नाम वी हैव राम अंजनी गंगा जी आपके लिए भी अगला तराना हम करेंगे। रुमिता जी अगला गाना आपकी ओर से आपकी प्यारी सहेली अंजू के नाम नीलिमा जी है। नीलिमा जी कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नीलिमा जी इन एडवांस। ये जो बर्थडे है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। बबीता जी भी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है और आयशा यहाँ पर फिर आ चुकी है। हाय आयशा। और चलिए यहाँ पर ये जो अगला तराना है इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं दोपहर के 1 बजे के समाचार की और समाचारों के उस पार हम आपसे मिलेंगे सुहाना सफर के सेकंड आवर में। तो हमारा साथ आप यूं ही देते रहिए ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर सुहाना सफर।
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: देश विदेश की खबरें सुनते हैं आपसे विधिमा नमस्कार आपको
1: नमस्कार नितुषा सभी सुनने वालों को नमस्कार श्रम कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर आत्मा शांतियों की भूख हड़ताल जारी है श्रम मंत्री रेसा उत्तम और यूनियन नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने निजी क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा की कमी और नियोक्ताओं के असहयोगी रवैये पर चिंता जताई इसके अलावा उन्होंने बेलोंबक के एक होटल में हुए यौन उत्पीड़न के प्रयास के मामले में श्रम मंत्रालय की निष्क्रियता का भी पर्दाफाश किया जहां कथित तौर पर पीड़िता को मुआवजा देकर चुपचाप देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था विदेश में बसे मॉरिशस के विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अब मॉरिशस के रोगियों की सेवा में है यूके में रहने वाले दो नेत्र रोग विशेषज्ञों प्रोफेसर पैट्रिक यू वाईमान और डॉक्टर सिंथिया यू वाईमान ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम से मुलाकात की वे कैम्ब्रिज लंदन और सिंगापुर नेशनल आई सेंटर के विशेषज्ञों के समर्थन से ग्लूकोमा और मधुमेह से जुड़ी आंखों की बीमारियों के लिए नई स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है आवास और भूमि मंत्रालय ने देश भर में सामाजिक आवास के वितरण में तेजी लाने की घोषणा की है जिसके तहत 2300 NSLD और 185 NHDC मकानों की प्रतिक्रिया विभिन्न चरणों में है और की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और लगभग 300 परिवारों को चाबियां मिल चुकी हैं हालांकि इन आंकड़ों के पीछे उन जरूरतमंद परिवारों जैसे एकल माताएं और मेहनतकश माता पिता का वर्षों का इंतजार छिपा है जो अपने बच्चों के लिए एक पक्की छत पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और विदेश में वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर हुए घातक हमलों में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि ज़ापोरिज़्या में हुए हमलों जिनमें 6 लोग मारे गए में उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं रात भर में यूक्रेन में कम से कम 9 लोग मारे गए तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई थोड़ी देर में शोक समाचार La chapelle ardente de Moura, Railroad Petite Rivière में 76 साल के 76 years old के श्री जयदत्त जीवित जो जय नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है वे Railroad Nouvelle-Mille Triolet रहते थे उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे La chapelle ardente de Moura, Railroad Petite Rivière से उठाकर Triolet की शमशान भूमि दी जाएगी cremation today at 3 p.m. Avenue Corbijou, Montsidame, 90 साल की 90 years old की बीबी रबिका रामपत पैदाइशी नाम बकोअली और जो हाफिज नाम से भी जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं उनका जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके शौहर अब्दुल सत्तर रामगत के मकान एवेन्यू कोबिजू मोतीदा से उठाकर मेजिन कोंडमास का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 2:30 नंबर 25 कैप्टन पोंथे सेंट क्वा में 56 साल के 56 years old के श्री जयराज मुसैन जो सुंदर नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर नंबर 25 कैप्टन पोंथे सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भोले वाले दिपत की शमशान भूमि दी जाएगी क्रमिशन टुडे एट 2:30 सैन फ्रांसवा कालोदीन में 84 साल की 84 years

0: Sol kishrime ti uma buti bara pedashinam baju aur jo uma naam se bhi jani jati thi ki mrityu ho gayi hain unke arthi aaj din ke 2:30 baje unke ghar Saint François Kalujin se uthakar Daruitsi ki shmshan bhumi di chai chai ki cremation today at 2:30. Musalman Ramalingam Forest Side Kupip mein 44 saal ke 44 years old ke जनाब मोहम्मद शकील साहिब जो शकील नाम से भी जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं उनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके घर मुसलमान रामलिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप से उठाकर बिकाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 2 पीएम शमेल कल कैंस कंटों वाक्वा में 77 साल की 77 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमती लाल बहादुर जो कमला नाम से भी जाने जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर शमेल कल कैंस कंटों वाक्वा से उठाकर मोताई से पिया बोंपू की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Suhana Safar. Suhana Safar.
2: चलिए सुहाना सफ़र के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम है यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू वेरी वेरी मच पुराने गानों का ये जो कारवां है आज 3 बजे तक चलेगा तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ इन खूबसूरत गानों के सफ़र में और अभी के लिए जीवन मृत्यु फिल्म का ये जो तराना है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में आप सभी के नाम चल पड़े

0: नया सफर।
1: ऐसे बाय द वे हम सावन के महीने में हैं और सावन के महीने में सावन का गाना ना हो तो कैसे चलेगा। तो चलिए, जिसने भी इस गाने की रिक्वेस्ट की है कुसुम जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये महीना अपने आप में ऐसे ही बहुत स्पेशल होता है, बहुत ही डिवोशन से भरा होता है, बहुत ही जैसे कि क्या कहते हैं खूबसूरती से भरा होता है, क्योंकि नेचर में अपने आप में इतनी खूबसूरती छाई होती है, बारिश होती है, चारों ओर हरियाली होती है, है ना। इट्स जैसे कि कहते हैं ना, एक नए जीवन का प्रतीक होता है ये महीना। और चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। सेबास्टियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी हैव सबीना। सबीना जी, अगला गाना आपकी ओर से आपकी प्यारी बेटियों के लिए। वी हैव सोनाली, शालिनी और श्रीना। आशा जी हमारा साथ दे रही है, अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डीजे दया हाय। वी हैव किंग, मनोज, कवि, सिमला जी इस समय हमारा साथ दे रही है। वी हैव सर, वी हैव देविका, लव, अश्विन, श्रद्धा, विश्वनाथ जी ट्रिनिडाड से हमारे साथ कनेक्टेड है। संगीता सुकारी जी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमा, निशा गोकुल, देवी, सावन, सभी बड़े प्यार से हमें सुन रहे हैं और हमारे इस लाइव के ज़रिए टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारे साथ कनेक्टेड है। और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की। दो छोर फिल्म से लिया गया चाहे रहो दूर, ये जो गाना है, थोड़ी देर पहले किसी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी तो आप लोगों के लिए चल पड़ा।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए हम आपके आपसे दूर तो नहीं है, आपके रेडियो के जरिए, हमारे इस टिकटॉक लाइव के जरिए आपके बहुत ही करीब है और यहाँ पर आपसे कनेक्टेड है। और कहते हैं ना कि हर एक दिन खास नहीं होता है, लेकिन हर एक दिन में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, मतलब कि हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ, कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम अपनी परेशानी से, अपने दुख से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन एक समय होता है, टाइम आता है, बातों को समझते हैं और हम निकल भी जाते हैं। और जहाँ तक खुश रह सके रहिए, क्योंकि एक यही चीज़ है जो जो हमें बहुत दूर तक ले जाती है। तो चलिए यहाँ पर गानों में जोड़ते हैं ये अगला तराना। फर्स्ट फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में। इस समय बॉम्बू से दनेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो है गाना जाता है इनकी और से इनकी पत्नी सुनीता के नाम, सभी देवदास परिवार के लिए। और कह रहे कि खूबसूरत गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अगला तराना खासकर दनेश्वर जी आपके नाम और आपकी पत्नी सुनीता के नाम। गीता जी हमारे साथ जुड़ी है, निज़ाम उजिया जी, वी हैव करुणा, वी हैव संजय मोदी, विलियम, राधा, मायरा, कांची बेगम, सब बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। करुणा राम जी आपको वेलकम। और जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। वी हैव कारेश, हाय कारेश, हाउ आर यू। चलिए तब तक इस गाने को सुनते हैं और फिर कुछ और डेडिकेशंस हम इंक्लूड करेंगे।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए वो कौन थी फिल्म का ये जो अगला तराना है, महेंद्र कपूर साहब और लता जी की आवाज़ों में चल पड़ा गाना जी, विद्या नायको जी आपके नाम ये गाना जाता है, आपकी ओर से सभी नायको फैमिली

के लिए वी हैव मदन जी, देविका जी, तानिया सिबालक है, बेबी जेन जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में विल ट्राई टू इंक्लूड इन आवर प्रोग्राम, शामिल हम जरूर करेंगे। और अभी के लिए चलिए इस गाने को साथ मिलकर सुनते हैं।

0: सुहाना सफर
1: चलिए यकीनन खुशी का मौका तो है ही क्योंकि आप सभी साथ जो दे रहे हैं हमारा कहते हैं ना कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और दुख एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से कम होती है ज़िंदगी का ये गणित भी कितना अजीब है ना और चलिए यहाँ पर अब बारी है इस अगले तराने की अगला जो गाना है तुझे रब ने बनाया किस लिए लक्ष्मी जी आपके नाम इस गाने को हम करेंगे बड़े ही प्यार से आप हमारा साथ दे रही है यहाँ पर एक मैसेज आया है हाय सुमी हाउ आर यू विश You a good day, can we be friends? लेकिन आप कौन है आपने नाम तो नहीं बताया अपना नाम तो बताते तो हमें पता चलता कि आप कौन हैं और हमारा साथ दे रहे हैं इस समय जो है हमारे साथ सुनीता जी भी ग्रॉन्गअप से साथ दे रही है पुराने गाने सुनना पसंद करती है माला जरी जी भी हमारे साथ हमेशा कनेक्ट होती है तो माला जी अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं आफेस जी लाविनियर से हमेशा हमारे साथ जुड़ती है और अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश करती है तो ये अगला तराना आफेस जी आपके लिए भी चल पड़ा

0: खाना सफर।
1: लेकिन कभी कभार अकेले जीवन काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब इस अकेलेपन की आदत लग जाती है ना, तो फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता है। तो बस सबकी अपनी पसंद होती है, कोई सबके साथ रहना चाहता है, तो कोई अकेलेपन में यकीन करता है। बस आप वहाँ रहिए जहाँ पर आपको खुशी मिलती है, आप वहाँ रहिए जहाँ पर आपके मन को सुकून मिलता है, आप वहाँ रहिए जहाँ पर शांति हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारी मतलब कि शांति खो देती है, मतलब कि शांति नहीं रहती है जीवन में, तो फिर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है वो किस लिए है, है ना। तो इसलिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो चलिए अभी के लिए अगला गाना जवानी दीवानी फिल्म का ये जो तराना है जाएगा डेजी जी आपके नाम। जयेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जय यश की ओर से हैप्पी बर्थडे शशिता को, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शशिता जी। रीना जी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। हंसले थैंक यू फॉर लविंग द लाइव जो इस समय टिकटॉक के पेज पर चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना जवानी दीवानी फिल्म से लिया गया। बाय द वे जवानी दीवानी ये फिल्म भी काफ़ी लाजवाब थी। इसमें कौन नज़र आए थे आप बताना, तो देखते हैं आप लोग जानते हैं मतलब कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा है, इस फिल्म में एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है।
2: You're listening to RM3 Radio।

और यही गाना जायद आपके नाम ओयता से इस समय आप हमारे साथ कनेक्टेड है। गाना जाता है आपके एम्प्लॉयर्स के लिए, आपने कुछ ऐसा ही लिखा है शायद, अंजू और अनायल के लिए। यस, जवानी दीवानी मूवी 1972 में रिलीज हुई थी।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। चले गानों के साथ साथ हमें भी अपना हम सफर आपने बना लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते ही देखते 1:50 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। खूबसूरत गानों के इस कारवां में जोड़ते हैं इस अगले तराने को। आनंद फिल्म का ये जो अगला गाना होगा, मना डे साहब की आवाज, जिंदगी कैसी है पहेली। और ये खूबसूरत सा तराना मानिता जी आपके नाम जाता है। मानिता जी आपको भी प्रणाम, हम बिल्कुल ठीक है, आशा करते हैं कि आप भी ठीक है। प्रोग्राम को आप पसंद कर रही है, गानों को आप एंजॉय कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो खूबसूरत सा तराना है आनंद फिल्म का, जाता है आपकी मामा सुमंती के नाम, आपकी बहनों के लिए। आरती है, सचिता है, बबीता है, रेखा है, साथ में है राहुल यादव, केशना, सभी सेंट जूलिया विलास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही गाना उन सभी के नाम जो इस गाने को पसंद करते हैं। RM3 Radio.

0: कभी तो हंसाए।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: और चले इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 2 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार जो है हम आपसे मिलेंगे सुहाना सफर के 3rd आवर में।
3: रंगत है दिल में, मोहब्बत है क्या जिसमें, औरत है बस, जन्नत ही जन्नत है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day,
3: take exactly
2: all
3: 2
2: night.
3: p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
4: सभी सुनने वालों को नमस्कार। युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय संवाद के केंद्र में जेंडर इक्वालिटी, मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया, एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए। छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर युवाओं ने लैंगिक समानता के लिए एक चार्टर प्रस्तुत किया और इस दिशा में काम करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता जताई। वे मॉरिशस के डायस्पोरा का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी मातृभूमि के रोगियों की सेवा में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का विकल्प चुना है। इंग्लैंड में अभ्यास करने वाले न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट और ग्लूकोमा विशेषज्ञ प्रोफेसर पैट्रिक और सिंचा यू वाई मान इस सप्ताह मॉरिशस वापस आए हैं। मोका के न्यू आई हॉस्पिटल में वे पहले ही आंखों की समस्याओं से पीड़ित लगभग 100 रोगियों की जांच कर चुके हैं, जिनमें से कई ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। इस सप्ताह वे परामर्श और लेजर उपचार भी प्रदान करेंगे, साथ ही जरूरतमंद रोगियों को मुफ्त में सूक्ष्म प्रत्यारोपण भी उपलब्ध कराएंगे। आवास और भूमि मंत्रालय ने देश भर में सामाजिक आवास के वितरण में तेजी लाने की घोषणा की है, जिसके तहत 2300 NSLD और 185 NHDC मकानों की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और लगभग 300 परिवारों को चाबियां मिल चुकी हैं। और विदेश में कोलंबिया में आए पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े भूकंप के बाद कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
5: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए आप भी हमारे जो है जिंदगी में शामिल है, आप भी हमारे जिंदगी का हिस्सा है, रेडियो मनोरंजन के इस फैमिली का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो मनोरंजन में सुहाना सफर के इस थर्ड आवर में आप सभी लवली लिसनर्स का एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। सुमी आप सभी का साथ दे रही है, हमारा और आपका साथ जो है रहने वाला है दोपहर के 3 बजे तक। और चलिए यहाँ पर पूनम गिरधारी जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। पूनम जी आपको कवि किशन जी की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, सभी गिरधारी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और जितने भी लिसनर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अगला तराना आप सभी के नाम।
2: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलो ये सुहाना सफ़र, ये जो प्रोग्राम है, और अब शराबी फिल्म का ये जो अगला तराना है, किशोर जी आपके नाम हम करते हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, चलिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो और जो कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, वो सब कुछ आपको मिले और ढेर सारी खुशी।

0: चलें यहां पर आपको इंतजार नहीं कराएंगे और जल्दी से बढ़ेंगे हम इस अगले गाने की ओर और अगला जो तराना है 20 साल बाद इस फिल्म से लिया गया हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे बेशक बेशुमार प्यार यहां पर बरस रहा है सुहाना सफर इस प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन
1: सुहाना सफर

0: और चलिए यहाँ पर किशोर दा की आवाज़ में कर्ज फिल्म का ये तराना भी आप सुन रहे थे। और इस समय जो है हमारे साथ शबाना जी जुड़ी हुई है, और शबाना जी की ओर से जो अगला तराना है वो जाने वाला है इनके सभी दोस्तों के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, हमें सुन रहे हैं, काम करते करते हमारा साथ दे रहे हैं।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

और चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ सुहाना सफ़र का ये जो सफ़र रहा 3 घंटों का ख़त्म होने को चला और आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़े मानो इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए और कब हंसते मुस्कुराते आप लोगों से बातें करते आपके डेडिकेशंस को पढ़ते ये 3 घंटों का सफ़र ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला है ना। तो चलिए आखिरी गाना आप सभी के नाम हम करते हैं इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी। जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम का रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे 3 बजे के समाचारों के बाद और ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए साथ देते रहिए धन्यवाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विदिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। श्रम मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से ठीक पहले समाप्त हुई बैठक के बाद आत्मा शांतु ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। यूनियन नेता का ये निर्णय श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोपों से घिरी 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद आया है। युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय संवाद के केंद्र में जेंडर इक्वालिटी, मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया, एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए। छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वे मॉरिशस की डायस्पोरा का हिस्सा है और उन्होंने अपनी मातृभूमि के रोगियों की सेवा में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का विकल्प चुना है। इंग्लैंड में अभ्यास करने वाले न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट और ग्लोकोमा विशेषज्ञ प्रोफेसर पैट्रिक एन सिंचा यू वायमान इस सप्ताह मॉरिशस वापस आए हैं। मोका के न्यू आई हॉस्पिटल में वे पहले ही आंखों की समस्याओं से पीड़ित लगभग 100 रोगियों की जाँच कर चुके हैं, जिनमें से कई ग्लोकोमा से पीड़ित हैं। और विदेश में लीबिया के जाविया में पेट्रोल टैंक में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस जगह को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था। ढह चुके इस टैंक में 3,000 टन से ज्यादा पेट्रोल मौजूद था। अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सेवास्तोपोल में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री ऋषि कुमार गोपल, जो ऋषि नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे सेवास्तोपोल के टोटल फिलिंग स्टेशन के मालिक थे। उनकी अर्थी गुरुवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे उनके पिता श्री हरिदत्त गोपल के घर सेवास्तोपोल से उठाकर पहले सेवास्तोपोल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: RM3 Radio.

0: मंगलवार 11 अगस्त आज की तारीख। आज की चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर मैं हूँ रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूँ। और आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल युवा वर्ग को लगकर होगा, क्योंकि विश्व युवा दिवस जो मनाया जाने वाला है आने वाले दिनों में, इसी पर आधारित आज के इस कार्यक्रम को रखेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं दो ऐसे युवा जो बहुत ही जज्बे के साथ आगे बढ़ने का हिम्मत रखते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं और देश को आगे ले जाने की पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे एजुकेटर जुड़े हुए हैं, निधीश्वरलाल भजन जी, जो कि एक म्यूजिक एजुकेटर है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है रुद्रानी मोहाविया, जो युवा पत्रिका की रिपोर्टर है। आइए इन दोनों का स्वागत करते हैं। निधीश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और रुद्रानी आपका भी हम स्वागत करते हैं। और बिल्कुल आपका चेहरा देखकर हमें लगता है कि बिल्कुल युवा वर्ग जो है भरपूर ऊर्जा के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं निधीश्वरलाल जी से पूछना चाहूंगी, निधीश्वर जी आप हमें बताइए कि जो विश्व युवा दिवस हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और जो युवा है, ये आज का जो युवा है, इनके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, तो यूथ डे जो है, सबसे पहले मुझे लगता है एक ऐसा दिन है जिसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एडल्ट्स को एज ए यूथ उन पे क्या गुजरा, व्हाट चेंजेस डिड इट ब्रिंग टू देम, और युवाओं को दे शुड रिफ्लेक्ट ऑन उनको क्या मिल रहा है, दे आर लक्की टू गेट व्हाटएवर दे आर हैविंग टुडे, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, उसका लाभ कैसे उठाना है, क्या करना चाहिए आगे।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जो जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको कितने चैलेंजेस, कितने स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिलती थी, और आज का जो युवा वर्ग है उनको उतना स्ट्रगल देखना नहीं पड़ रहा है। सारी चीजें मम्मी या पापा को बताओ और वो आपके हाथों में
1: हो जाता है, एक घंटे में
0: तुरंत हो जाता है। तो ये एक जानना बहुत जरूरी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये आप कह सकते हैं कि समय समय की बात है, पर आज के युवा को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे की मेहनत जो आपके आपके बड़े बुजुर्गों ने की है, इसका भी हमें उतना ही कृतज्ञता हमें प्रकट करनी चाहिए। और बिल्कुल, आज जब हम युवा वर्ग की बात करते हैं, तो युवा वर्ग, मैं पूछना चाहूँगी रुद्रानी से कि आपके हिसाब से युवा की परिभाषा क्या है, उम्र या सोच?
2: मुझे ये लगता है कि दोनों हैं, उम्र और उम्र भी है और सोच भी है। युवा की परिभाषा यदि मैं देना चाहूँ तो युवा वो है जिसमें सृजनात्मकता है, जिसमें बहुत कौशल है और जिसमें जिज्ञासा है सीखने के लिए।
0: बिल्कुल,
2: ये होगा, ये उम्र भी है और ये मतलब

0: उनके कौशलता को भी प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल, आइए निधिश्वर जी से जानते हैं आपका क्या कहना है, सिर्फ उम्र या सोच या दोनों?
2: जी, मेरे ख्याल से दोनों दोनों, और एक तीसरा भी ऐड करना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस,
1: अनुभव।
2: अनुभव बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो युवा वो है जो यू फेज जो है लाइफ में, वो मेरे ख्याल से कुछ 13-14 साल से शुरू होता है, पर कब खत्म होता है वो कोई बता नहीं सकता है।
1: सही बात है, कई बार कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं दिल तो बच्चा है,
2: दिल तो
1: मतलब
2: बच्चा है।
1: वो दिल में जो रवानियत है वो जारी होनी चाहिए। और बिल्कुल, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं ना कि आज समय बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, पहले जब समय बदलता था तो उसे हमें पता लगता था क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक था साइकिल एरा, धीरे धीरे करते हुए बढ़ता था, पर आज बहुत तेजी से समय बदल रहा है। तो निधिश्वर जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी 2026 में आज हम हैं, और जो 2010 वाले, जो हालांकि बहुत पुराना नहीं है हमारे लिए, तो जैसे मतलब अभी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन जो 2026 वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, और जो 2010 वाले युवा हैं, उनमें क्या अंतर आपने नोट किया है? और आप तो एक एजुकेटर हैं, आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर्स हैं, जो ग्रोइंग यंगस्टर्स हैं, ग्रोइंग एडल्ट्स हैं, उनके सोचने के ढंग में, टेक्निक को इस्तेमाल करने का जो ढंग है, आपको उनमें क्या अंतर दिखाई देता है?
2: अंतर तो बहुत है। सबसे पहले तो द मेंटालिटी, उनके सोचने की तरीका, सोचने की कैपेसिटी भी पूरा अलग है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो 2010 वाले युवा हैं
1: जी,
2: उनको कुछ, उनके स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा था उस टाइम पे, फैसिलिटीज भी कम थे उस टाइम पे मेरे ख्याल से। और आजकल के युवा हैं, उनको सब कुछ, हमने बोला अभी कि सब कुछ मिल ही जाता है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये जो
1: उनके जो सोचने का ढंग है,
2: जी,
1: उनके सोचने का ढंग, और आजकल तकनीक पर हम कहते हैं ना कि स्नैपिंग फिंगर्स पे, टच, एक टच के ऊपर हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत तेज़ी से बदलाव दिखाई देने लगा है। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, खासकर जब हम मॉरिशस की युवा पीढ़ी की बात करते हैं रुद्रानी, तो सबसे ज़्यादा वो क्या करने के लिए उत्सुक होते हैं, क्या करने के लिए वो उत्तेजित होते हैं?
0: वे मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी जो है मॉरिशस के, मॉरिशसीय युवा पीढ़ी, वे और सीखना चाहते हैं गतिविधियों में, खासकर युवाओं की मतलब जो सोच है वो ज़्यादा आकर्षण होती है।
1: ओके, एक्टिविटीज़
0: में, हाँ, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ में भाग लेकर वे अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं।
1: तो बिल्कुल जैसे आप बता रही हैं, और आप वही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हैं कि अगर उनको चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, कुछ अच्छी चीज़ों में उनको जैसे हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर उनको एंगेज रखा जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे हम युवा वर्ग की बात करते हैं तो कहते हैं कि युवा जो है, यंगस्टर्स जो हैं, वो देश का भविष्य है, देश की भावी पीढ़ी जिसे कहा जाता है, तो इस पर ये लाइन में कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत छुपी हुई है अकॉर्डिंग टू यू?
0: मेरे अनुसार इस लाइन में बहुत सच्चाई है, क्योंकि सच में युवा पीढ़ी देश के भविष्य के लिए काम करते हैं, उन अपने लिए भी काम करते हैं पर देश के लिए भी काम करते हैं, देश की प्रगति के लिए भी काम करते हैं। चाहे विदेश जाकर उन्होंने पढ़ाई की, वे वापस लौटते हैं और देश के मतलब काम आते हैं, तो ये बहुत बड़ा लाभ है देश के लिए।
1: बिल्कुल, और आपका क्या कहना है निधिश्वर जी?
2: जी, तो उस पे ऐड करने के लिए, मैं भी युवा ही हूँ अभी।
1: बिल्कुल,
2: तो मेरा जर्नी जो था, मैं भारत में था 5 साल के लिए
1: जी,
2: तो मेरे देश के प्रोग्रेस के लिए मैं वापस आया। अभी जो भी मैंने सीखा, जो अनुभव मैंने महसूस किया वहाँ पे, तो वही शेयर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे टीचिंग में या ऐसे भी
1: तो जैसे एक तरह से देखा जाए तो जो भी आपने ग्रहण किया वो आप वापस लौटा रहे हैं, और ये अनुभव जो है शेयरिंग करके, मैं समझती हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल चाहती है कि उनको एक सही गाइडेंस मिले, एक सही मार्गदर्शन मिले, जिससे कि वो अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो उसे समझ सके और सही राह चुन सके। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व युवा दिवस पर, और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं दो ऐसे

जाबाज युवा जो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र से है पर है तो युवा, और उनका जो परसेप्शन है, उनका जो सोचने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं उतना ही ऊर्जात्मक है जहाँ पर वे देश की प्रगति में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसे समझना, इसे जानना, ये हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है। आज की चर्चा का ये कार्यक्रम जारी रखते हैं अभी थोड़ी ही देर में एक गीत के ब्रेक के बाद।

0: आज हमारे साथ एक म्यूजिक एजुकेटर जुड़े हुए हैं, निधिश्वर लाल भजन जी, और साथ ही साथ न्यूज रिपोर्टर, बिल्कुल जो युवाओं की बात लोगों तक पहुंचाती है, हमारे साथ है रुद्रानी मुहाबिया, जो आज हमारे साथ इस मंच पर हमारे मेहमान हैं। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व युवा दिवस पर। तो विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ज़रूर जानना चाहेंगे, युवाओं की ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे कि आज युवाओं के लिए तीन सबसे बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है, बेरोजगारी, मेंटल हेल्थ या फिर सोशल मीडिया। आइए जानते हैं निधिश्वर जी से।
1: जी देखिए, मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ अभी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है यंगस्टर्स को। पहले के ज़माने अगर देखें तो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह इन सब की बातें नहीं करते थे, क्योंकि ये सब नहीं था एक ज़माने में।
0: सही।
1: आजकल आप देखोगे तो 14-15 साल के बच्चे
0: डिप्रेशन
1: बोल रहे हैं कि जो डिप्रेस, स्ट्रेस है बहुत सारा, एकेडमिक या कुछ भी।
0: हाँ।
1: तो मेरे ख्याल से उसको टैकल करने के लिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। खुद का एग्जांपल लूँगा तो मेरा स्केड्यूल ऐसा था एज ए स्टूडेंट कि मेरे पास ये सब इन सब के बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं था। सुबह स्कूल, फिर उसके बाद रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होता था। हम लोग, मतलब मैं, मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स भी मेडिटेशन करते थे, स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व थे, तो हम लोग स्विमिंग करते थे, फुटबॉल खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, ताइची भी करते थे, जो कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है।
0: बहुत अच्छा है, बिल्कुल।
1: और ऐसे संगीत से हमेशा से, मैं 7 साल का था तब से जुड़े थे संगीत से। तो मेरे ख्याल से आजकल के पेरेंट्स जो है सब काम कर रहे हैं, बोथ पेरेंट्स, तो बच्चों स्कूल के बाद क्या करते हैं, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब वो ऐसे ही फ्री बैठते रहते हैं तो उनके दिमाग में कैसे सोच आते हैं वो हम लोग बता नहीं सकते हैं, पर उसका असर जो है ये दिखता है एकेडमिक में, सोशल बिहेवियर में, ऐसे स्कूल में उनके पीएस के साथ कैसे बात करते हैं, इन सब का बहुत बड़ा
0: असर दिखाई देता है। बिल्कुल। और जहाँ पर हम सोशल मीडिया की भी बात करते हैं तो आजकल बच्चे लोग सोशल मीडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जहाँ पर हम, आप कह रहे हैं कि माता पिता के साथ जुड़े रहना चाहिए, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा समय, और मैं समझती हूँ ये हर एक घर का किस्सा है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता। सभी के घरों में देखा गया है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय निकालती है सोशल मीडिया पर। तो क्या इसका भी उनके शरीर पर, उनके मन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है?
1: जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया जुड़े रहने के लिए सबके हाथ में फोन रहता ही है आजकल।
0: बिल्कुल।
1: तो फोन का इट्स बोथ वेज, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। फोन को कैसे यूज करना है, कितना समय यूज करना है, अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें लिखा था कि एक सर्वे किया गया था, एक नौजवान अभी 8.5 घंटे तक, मतलब मिनिमम फोन से जुड़ा रहता है हर रोज। तो वो इट्स 1/3 ऑफ देयर लाइफ ऑफ एवरी डे गोइंग ऑन द फोन। तो अभी वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ये सब मैटर करता है।
0: बिल्कुल।
1: अभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक, यूट्यूब,
0: सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी ऐसी अनवांटेड, कह सकते हैं कि हम ये नहीं कहते कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कई बार अनवांटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने ब्रेन को स्टफ करते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग को भर देते हैं कि कहीं कोई हमें स्पेस नहीं मिलता खुला हुआ। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, कौन से ऐसे तीन बड़े चैलेंजेस हैं जो आज की युवा पीढ़ी फेस करती है?
2: कई छात्र होते हैं, कई नवयुवक होते हैं जो इस सब से गुजरते हैं, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस प्रेशर होता है, कभी कभी पीयर प्रेशर भी होता है। तो इस सब से प्रभावित होकर एक नवयुवक, युवक या युविका दोनों, वे एक ऐसे स्ट्रेस से गुजरते हैं जिससे वे, मतलब अपने डेली रूटीन को भी अफेक्ट करेगा,

0: और करियर को भी, या फिर जब आप कॉलेज या स्कूल में जाएंगे ये भी आपको प्रभावित करेगा किसी ना किसी माध्यम से। वो तनाव एक बहुत ही चुनौती बन जाती है,
1: जैसे एक बहुत बड़ा वोल्केनो जैसे आपके अंदर वो डेवलप होता जाता है। और मैं समझती हूँ आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत कम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत कम लोग बोल पाते हैं, बोलते भी हैं तो मतलब सही व्यक्ति से नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए दोस्तों से बात कर रहे हैं तो दोस्त भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, सही
0: मार्गदर्शक
1: नहीं मिल पाता, तो ये एक समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल।
2: इस पे मैं अगर ऐड कर सकता हूँ तो जब बच्चे ऐसे फोन के साथ जुड़े रहते हैं तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ही मतलब पूरा गायब हो ही जाता है ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बात करने का जो मतलब हम कहते हैं ना कि बात करने की जो ढंग है या बात करने का जो एक्सप्रेशन है
2: वो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। दे आर फुल्ली लिविंग इन अ डिजिटल
1: वर्चुअल, बिल्कुल वर्चुअल दुनिया में रहना चाहते हैं।
2: उनका दिमाग मतलब they cannot even talk properly,
1: express नहीं कर पाते। बिल्कुल। और जहाँ पर
2: verbally emotionally वो लोग express
1: नहीं कर पाते, कई बार जहाँ पर उनको express करना है तो कई बार हमने देखा है कि वो इतने ज्यादा गुस्से में आकर या इतने ज्यादा उत्तेजनक आवाज में हमारे साथ बात करते हैं,
2: गुस्से में, या फिर वो लोग इतना shy बन जाते हैं
1: हाँ
2: कि वो लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप आओ कुछ भी बोलो,
1: वो उन पर कोई असर नहीं दिखाते। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत एक कह सकते हैं कि खतरनाक अलार्म है। बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं
0: भी कुछ मतलब जब बात करते हैं बच्चों को तो उनका उनकी भी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा मुझसे बात करे।
1: बिल्कुल,
0: पर वो अपोजिट हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल, तो मैं समझती हूँ इसको बहुत सख्ती से नहीं पर बहुत ही समझदारी के साथ बहुत ही शांत तरीके से इसको हैंडल करना उतना ही आवश्यक हो जाता है। मैं जरूर पूछना भी चाहूंगी कि आज जहां पर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, रील्स, आज कहते हैं ना कि स्क्रोलिंग की दुनिया है, एक कह सकते हैं कि मोर देन वन मिनट, एक मिनट तो बहुत ही ज़्यादा है, एक मिनट से ज़्यादा कोई रील चले तो हम स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं, यानी दिमाग का टिकना एक जगह पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो जहाँ पर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, रील्स की बात करते हैं, तो आज एक कंपटीशन जैसे एक जंग छिड़ चुकी है इसमें, तो यहाँ पर हम बिल्कुल मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी पर बात करते हैं। यहाँ पर एज ए एजुकेटर अगर आपके स्कूल में या आपके एनवायरमेंट में कहीं पर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो आप कैसे टैकल करते हैं इन सारी चीजों से?
2: सबसे पहले तो ये क्यों होता है ये समझना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि आपने कहा कि फोकस नहीं रहता है बच्चों का क्योंकि उनको आदत हो गई अभी कि 10-15 सेकंड में
1: कुछ और नया चाहिए।
2: ठीक है, तो ऐसे क्लास में रोज का हो गया।
1: बिल्कुल, आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा।
2: जी, बहुत बड़ा चैलेंज है
1: जी।
2: तो उसके लिए हम लोगों को भी अपने टीचिंग में ये अडेप्ट करना है कि हर आधे मतलब हर 30 सेकंड के बाद कैसे वापस स्टूडेंट का अटेंशन कैप्चर करना। तो हमको भी हर एक मिनट या 30 सेकंड के बाद कुछ नया इन्फॉर्मेशन फीड करना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
2: चाहे वो सेम इन्फॉर्मेशन हो पर डिफरेंट तरीके
1: से। जी बिल्कुल।
2: और म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इतना वास्ट है कि इतना सब कुछ है, इतना मटेरियल है उनको फीड करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और रुद्रानी, आप एक रिपोर्टर हैं एक पत्रिका की, तो आप किस तरह से युवा को कैप्चर करती हैं या कैसे आर्टिकल्स ढूंढती हैं ताकि जो युवा है उनका आप ध्यान केंद्रित कर सकें?
0: युवाओं को जब आप एक डिज़ाइन के माध्यम से उस पत्रिका में मतलब कलर्ड हो और कुछ गतिविधियाँ एग्जाम्पल्स हो तो वे आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए। और जितना हो सके उसको साधारण बनाइए, सरलता से आप पेश कीजिए, वो युवा या युविका वो आकर्षक होगा पढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हम युवा बहुत कम पढ़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये एक छोटी सी पत्रिका है जिसमें हिंदी सप्ताह के दौरान मतलब महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी सप्ताह के दौरान जो हर वर्ष मनाया जाता है उसमें हम स्वरचित कविता प्रतियोगिता रखते हैं, आशुवाक प्रतियोगिता, पोस्टर कंपटीशन, अंत्याक्षरी और नुक्कड़ नाटक। तो इस सब में जो यंगस्टर्स होते हैं वे गतिविधियों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब युवास पत्रिका वे पढ़ेंगे उनको जानेंगे कि मतलब नुक्कड़ नाटक हो रहा है या कुछ

0: स्वरचित कविता, अच्छी अच्छी कविता प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसको वे रुचि दिखाएंगे, इस पर वे रुचि दिखाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने लगेंगे।
1: ओके, तो ये केवल MGI के स्टूडेंट्स के लिए होता है या फिर कोई बाहर से भी अगर उसमें भाग लेना चाहे तो उनके लिए भी होता
0: है? नहीं, वो केवल MGI के स्टूडेंट्स होते हैं। और युवास टीम में पूर्व विद्यार्थी हैं जो हिंदी कर चुके हैं और वर्तमान विद्यार्थी भी हैं। हम दोनों मिलकर एक टीम बनकर रिपोर्टर्स और एडिटर्स में विभाजित करते हैं काम। और हिंदी सप्ताह के तुरंत बाद हम एक जैसे एक सप्ताह और दो सप्ताह या एक महीने तक उस पत्रिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे बनाया जाए, कैसे ऐड किया जाए, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट वगैरह हम बातचीत करते हैं।
1: यानी एक तरह से अगेन वो इन्वॉल्वमेंट वाली बात आ जाती है कि हर एक को एक कार्य दिया जाता है ताकि वो अपने तरीके से, वो क्रिएटिव तरीके से उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए। और मैं समझती हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। जहाँ पर हम AI के ज़माने में हैं, जहाँ 10 साल पहले हम AI का नामो निशान समझना तो सोचिए दूर की ही बात है, पर आज हम AI में अगर ना हो तो कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। और जहाँ हम AI की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हैं जो सर्कुलेट होती हैं। साथ ही साथ जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो युवाओं के लिए आज जब हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, तो एज अ टीचर आप क्या इसमें एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि AI, डिजिटलाइजेशन, कंटेंट मेकिंग, क्योंकि कंटेंट भी बनाना, क्रिएटिव होना आज एक बहुत ही बड़ा हम कहते हैं कि पॉइंट हो चुका है कि आप में वो होना चाहिए। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है, क्रिएटिविटी वाली क्वालिटी नहीं है, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो आप एक म्यूज़िक टीचर हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होना ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है?
2: देखिए, म्यूज़िक जो है इट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व विद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बिना म्यूज़िक
1: पॉसिबल,
2: मजा नहीं आएगा म्यूजिक।
1: सही बात।
2: तो AI की बात करें तो आजकल के युवा बच्चे बहुत डिपेंडेंट हो गए AI पे, बोथ इन अ गुड वे एंड अ बैड वे। इन अ गुड वे, जैसे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो AI का बहुत ही हेल्प मिलता है टू सिंप्लीफाई थिंग्स,
1: टाइम बचाता है। सबसे बड़ा तो है टाइम बचाना।
2: जी
1: बिल्कुल।
2: पर युवा जो है, स्कूल के बच्चे अभी इसका मतलब उनके पास अभी ये मैच्योरिटी नहीं कि कहाँ पे AI का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे नहीं। वो लोग अभी घर पे जाके होमवर्क अगर मिला है तो सिर्फ AI पे लगा देते हैं, पूरा आंसर मिल जाता है,
1: पढ़ने की भी हिम्मत नहीं दिखाते।
2: जैसे कि अभी रुद्रानी बोल रही थी कि वो लोग पढ़ते ही नहीं है बुक्स वगैरह।
1: सही
2: जी, पहले तो लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स पढ़ते थे।
1: यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। और जब हम नुकसान की बात करते हैं, तो जब हम नुकसान यानी नेगेटिव साइड की हम बात करें, तो आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं, एडिक्शन बढ़ रहा है। खासकर हम कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्क एडिक्शन के साथ साथ ड्रग एडिक्शन भी बढ़ रहा है। तो बीइंग अ यंगस्टर, आप एक युवा हैं, तो इस पर आप के क्या विचार हैं?
0: मैं तो कहूंगी कि एक युविका होने के नाते हमें सबसे मतलब हम जानते हैं कि ये नकारात्मक चीजें हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मन में बिठा लेना चाहिए कि हाँ, साइबर क्राइम हो ध्यान रहे, सोशल मीडिया एडिक्शन वो मतलब वो एक
1: अपने आप को बड़ी समस्या है।
0: जी, अपने आप को वो छूट नहीं देनी है। और जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स एडिक्शन, नशीले पदार्थ का सेवन, तो ये बढ़ती जा रही है मॉरिशस में, ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम युवाओं से बात करेंगे, एक टॉक के माध्यम से, एक डिस्कशन के माध्यम से उनको समझाएंगे कि मतलब ये नशीले पदार्थ का सेवन, उसके नुकसान इत्यादि, तो वो कहीं ना कहीं एक लाभ लाएगा, एक चेंजमेंट लाएगा, एक परिवर्तन लाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत आवश्यक है कि हम युवाओं से बात करें, उनको समझाएं कि साइबर क्राइम का क्या होता है, सोशल मीडिया एडिक्शन पर, ड्रग्स एडिक्शन पर उनको समझाना चाहिए।
1: रुद्रानी, मैं यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब हम ड्रग एडिक्शन

0: बात करते हैं। वैसे तो हमारे रेडियो के माध्यम से हम आए दिन ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें उसके नुकसान के बारे में बात करते हैं, हेल्थ पर कई सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं, साथ ही साथ जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, हालांकि पेरेंटिंग पर भी हमने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जहां पर हम लोगों से भी सुझाव लेते हैं कि किस तरह से इसे हैंडल किया जाए। पर आप एक युवती होने के नाते आपको लगता है कि जब एक पेरेंट बच्चों को यही सारी चीज़ें सिखाएं और एक युवा वर्ग, यानी मान लीजिए आप उसी एज ग्रुप में हैं, अगर आप उसे उनको समझाती हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, आपको लगता है वो अप्रोच उनको ज़्यादा समझाने के लिए युवाओं का जो अप्रोच है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है?
1: बिल्कुल, इससे मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि युवा वर्ग एक दूसरे को और भी जानते हैं, बहुत फ्रेंडली अप्रोच होगा। अभिभावक भी समझा सकते हैं एक बच्चे को, वे तो मतलब अपने ढंग से समझाएंगे, पर युवा वर्ग जब समझाएगा ज़्यादा अप्रोच होगा,
0: उन लोग आई थिंक ज़्यादा फ्रेंडली
1: ओपन अप करेंगे, तो वे अपने आप का जो वर्शन है वो देंगे और हमारी बात भी सुनेंगे। हम आपस में जो डिस्कशन होगा उस पर हम लोग केंद्रित करेंगे, तो इसके माध्यम से बिल्कुल युवा वर्ग भी
0: उनका सहयोग ज्यादा उस पे असरकारक होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि युवा वर्ग एक दूसरे को ओपन अप करके अपनी बातें समझाने के लिए बहुत ज्यादा निपुणता से वे अपनी बात को रख सकते हैं। आप एक टीचर हैं, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आके खुल के आपके साथ उस किसी भी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं या बात करते हैं?
2: बिल्कुल, ऐसे तो बहुत बार हुआ है। तो एज ए यंगस्टर मैं उनके वर्शन समझ पाता हूँ कि वो लोग ये सब क्यों करने लगे,
0: क्यों फेस कर रहे हैं।
2: जी, क्यों फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि उनके सोशल बैकग्राउंड की वजह से, उनके जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रह रहे हैं इसकी वजह से, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स इन सब मतलब इन सब से डील करता है, तब वो जाकर इसमें पड़ गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो अभी स्कूल लेवल पे और पर्सनली उनको कैसे उसमें से निकालना है ताकि उनके भविष्य ब्राइट हो,
0: बिल्कुल,
2: तो ये अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जब ये ऐसे केस लेकर आता है तो हर एक का सोल्यूशन अलग होगा।
0: सही बात।
2: जी, तो एज ए यंगस्टर मैं क्यों समझ पाता हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ये ज्यादा
0: गैप नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो ये समझ कर अभी पहले तो काउंसलिंग से चालू करना पड़ता है कि ये सब मत करो, उसके ये असर है। कुछ बच्चे यहीं पे उनको समझ में आता है, पर विल पावर ये सबसे महत्व चीज है उसमें।
0: जी बिल्कुल,
2: ना बोलना इन सब चीजों का, ये सबसे मुश्किल चीज है उनके लिए, क्योंकि उनके शरीर भी इन सब चीजों से
0: आकर्षित होती है और टेम्प्ट होती है इन सारी चीजों को अपनाने के लिए। बिल्कुल,
2: चाहे वो सिगरेट हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो।
0: सही।
2: तो ये सब अभी पीयर प्रेशर भी आ गया इसमें।
0: बिल्कुल,
2: हमारे दोस्त ऐसा करते थे तो हम भी ट्राई करेंगे, या कुछ दोस्त आकर बोलेंगे कि ये ट्राई करो यार, मस्त है,
0: एक दिन में कोई तुम्हें नशा नहीं लग जाना है। बिल्कुल, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उनको, लेकिन इसमें भी टीचर्स, पेरेंट्स का तो है ही, उनकी तो अहम भूमिका है, पर टीचर्स भी जिस तरह से उनको हेल्प करते हैं काबिले तारीफ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे यंग टीचर्स हैं जो इन सारी चीजों को बिल्कुल कहते हैं कि कई बार जो पेरेंट्स बच्चों के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते, टीचर्स लोग वहां से शुरुआत करते हैं उनकी काउंसलिंग की। और जहां पर हम पेरेंट टीचर्स की बात करते हैं, बच्चों के स्टडीज की बात करते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई सारे बच्चे, भले सोशल मीडिया ना हुआ, पीयर प्रेशर ना हुआ, पर कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाने के बाद, डिग्री कंप्लीट कर ली और डिग्री आ जाने के बाद कई बार उनको काम ना मिलना, ऐसी भी कई सारी सिचुएशंस हैं जो उनको एंग्जाइटी की ओर, डिप्रेशन की ओर ले चलती है। तो यहां पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी निधिश्वर जी से कि डिग्री तो है पर नौकरी नहीं है, तो इसमें ऐसी सिचुएशन के साथ एक यंगस्टर, एक युवा जो अभी अभी मतलब कह सकते हैं कि 25-26 साल का नवयुवक है, जिनको अभी काम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग किस तरह से डील करें?
2: देखिए, सबसे पहले उसका कारण समझना बहुत जरूरी है।
0: जी,
2: तो एक फील्ड को चूज करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि भविष्य में उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या वो इन डिमांड रहेगा या फिर क्या होगा उसका। और अभी मान लीजिए कि आपने एक डिग्री कंप्लीट कर दिया, आपको तुरंत जॉब नहीं

0: नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब नहीं कि आपको कभी नहीं मिलेगा जॉब, ठीक है? तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए उस पे फोकस करना चाहिए, चाहे आप कोई स्किल लर्न कर रहे हो, अभी कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे आप, तो हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, तो आप स्किल्स होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो म्यूजिकल हो, आप कोई शॉर्ट कोर्स कर रहे हो, आजकल ऑनलाइन AI के द्वारा तो बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज ऐसे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से,
1: बिल्कुल,
0: तो आप अपना टाइम का सही इस्तेमाल करके आप कोई शॉर्ट कोर्स फॉलो कर सकते हो टू मेक योरसेल्फ इवन
1: More progressive, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्रेस करते रहना है, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर रुकना नहीं है, आपने कंटिन्यू, क्योंकि कई बार होता है ना कि समय इवॉल्व हो रहा है, हर दिन हर महीने आप देखिए कुछ ना कुछ नया आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अपनाते रहना बहुत जरूरी है। आप एक जगह पर टिके ना रहें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, समय बदलने की बात करते हैं, आज ग्लोबल बिजनेस बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो रुद्रानी आजकल ग्लोबल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल बिजनेस, ये क्या ये प्रोस्पेक्ट, इसमें कोई प्रोस्पेक्ट है हमारे युवाओं के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए?
2: जी बिल्कुल, बहुत प्रोस्पेक्ट्स है। मैं कहूँगी कि अगर ग्लोबल बिजनेस के बारे में मान लिया जाए, एक युवा ने डिग्री कंप्लीट कर दिया, वो नौकरी की तलाश में है, तो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है, वो मतलब CV के द्वारा उसको बहुत सारे लाभ होगा, उसको बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट्स होंगे जिसका वो पालन कर सकता है ग्लोबल बिजनेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मतलब और आजकल कहते हैं ना कि यहीं पर बैठकर आप पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी कुछ भी ऐसा चल रहा है वहां पर आप जुड़ सकते हैं, और बहुत छोटी दुनिया हो चुकी है, यानी यहीं पर बैठे बैठे आप ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में कहीं पर भी बैठकर आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये एक इतना बड़ा मंच हो चुका है। और जहां पर हम बात करें सोशल वर्क की, तो क्या आज के जमाने में जो युवा है वो वॉलंटरी बेसिस पर अपना योगदान देते हैं सोशल वर्क वॉलंटरी बेसिस, और जहां पर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो देश के विकास में आपको लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़ना पसंद करती हैं?
2: इसमें तो मतलब उन लोगों की कम रुचि है, मैंने अवलोकन किया है, कम रुचि है युवाओं को, मतलब वे इतने एंगेज नहीं होते। जब वॉलंटरी गतिविधियों का आयोजन होता है, स्वैच्छिक कार्य, उसमें वे उतने दिलचस्पी नहीं दिखाते, उतने भी सक्रियता से भाग नहीं लेते। कुछ लोग लेते हैं, दोनों तरफ से मैं बोलूँगी कि कुछ लोग लेते हैं और उनको पसंद है सोशल वर्क वॉलंटरी वर्क, ये बहुत ही लाभदायक भी होता है, पर ज़्यादातर मैंने देखा है युवाओं को स्वैच्छिक कार्य उतने में उतनी रुचि नहीं है,
1: मतलब वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब आजकल के युवा ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, यानी कहीं ना कहीं उनका खुद का फ़ायदा हो तो ही वे इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और बिल्कुल एज अ म्यूज़िक टीचर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जहाँ हम आर्ट की बात करते हैं, खेल फिर या फिर आर्ट ले लीजिए या फिर म्यूज़िक ले लीजिए, क्या बच्चों की दिलचस्पी इसमें है? और एज अ पेरेंट क्या बच्चों को अगर कोई म्यूज़िक में दिलचस्पी दिखा रहा है तो एज अ पेरेंट क्या बच्चों को उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है?
0: देखिए, पेरेंट का सपोर्ट तो सबसे ज़रूरी है ऐसे चीज़ों में, और मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा अभी कम होने लगा ये सपोर्ट। पेरेंट्स ज़्यादातर चाहते हैं कि उनके बच्चे एकेडमिक की तरफ बढ़े, पर ये स्किल्स जो हैं उसका महत्व वो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका क्या महत्व है स्टूडेंट या नौजवान की ज़िंदगी में। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स शुड एनकरेज यंगस्टर्स, चाहे आप वेस्टर्न म्यूज़िक सीखो, इंडियन म्यूज़िक, थिएटर, नृत्य, पोएम राइटिंग, पेंटिंग,
1: कोई भी आर्ट फॉर्म
0: जरूर सीखना चाहिए। इससे क्या है कि देखिए, मेरा ही अभी ऐसा है कि जब साज है घर पे, वायलिन है मेरा घर पे, तो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। हर कुछ भी करके मुझे वापस प्रैक्टिस करना है। तो हर आर्ट फॉर्म

0: का ऐसा ही है. तो जब आपके पास दूसरे चीजों नेगेटिव थिंग्स करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप बिजी हो इन अ प्रॉपर वे, इन अ फोकस्ड वे, तो आप खुद डेवलप हो रहे हो और नेगेटिव चीजों के लिए टाइम नहीं है. तो आई थिंक
1: मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि जब आप एक आर्ट फॉर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म क्यों ना हो, लेकिन देखा जाए तो आपके पास दूसरी चीजों करने का मतलब टाइम नहीं होता. गलत चीजों के लिए आपके पास, व्यर्थ समय गंवाने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपका मन कहीं और फोकस्ड है, आपका मन क्रिएटिव है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपको सही दिशा दे रहा है. जी हाँ. और यहाँ पर बिल्कुल जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो जीवन में कहते हैं ना कि पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है, बहुत बहुत अहम भूमिका है. क्योंकि आजकल हम ये कहते हैं कि आर्ट मत करो, इन सारी चीज़ों से तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, लेकिन पैसा, मैं नहीं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, आज के जीवन में पैसा उतना ही आवश्यक है, पर साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बनना, ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ आप जीवन को ले चले आगे, ये ज़्यादा मायने रखता है. क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम इतने ज़्यादा मैकेनिकल होते जा रहे हैं, रोबोटिक होते जा रहे हैं, कि हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ को पीछे भूलते चले जा रहे हैं. चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में.

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं और मेरा अंतिम सवाल निदेश्वर लाल जी से बस यही होगा कि देश के निर्माण में युवा की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: देखिए, मेरे ख्याल से तो युवा को एक लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी में, एक इंस्पायरिंग फिगर होना चाहिए और एक लीडर बन के, खुद एक लीडर

0: बनके ये अचीव करना चाहिए
1: और दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूंगी रुद्रानी, आपका क्या विचार है इस पर?
2: मैं यही कहूंगी कि जब जैसे कि निधेश जी ने बोला कि जब आपके मन में एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य का पालन कीजिए, उसको कामयाब बनाइए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: बिल्कुल,
2: नेवर गिव अप।
1: यानी कुछ भी हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि फेलियर, बिल्कुल बार बार हम फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें। आप नए तरीकों को अपना सकते हैं, और आजकल कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि इतने सारे रास्ते हैं जिसे आप अपना कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक जगह आप फेल हो गए तो ऐसा ना करें कि आप गिव अप ही कर दें, ज़िंदगी के साथ गिव अप कर दें, बिकॉज युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल हमारे देश का भविष्य है, और देश के विकास के लिए इन्हीं के कंधों पर सारा भार है। तो बस आप यही सोचकर जीवन में आगे बढ़ें, और इसी के साथ वर्ल्ड यूथ डे या विश्व युवा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सभी युवाओं को, और बिल्कुल पेरेंट्स का साथ, टीचर्स का साथ इसमें बहुत ही बड़ा है। तो आपको भी हम बिल्कुल बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, और हमारे दोनों मेहमानों को भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

शाम के 4:08 हुए हैं दोस्तों, नमस्कार आप सबको। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो, और आप सुन रहे हैं ये बहुत प्यारा कार्यक्रम। जी हाँ, खूबसूरत कार्यक्रम आपके सितारे। जी हाँ, आपके सितारे कार्यक्रम 6 बजे तक, और यहाँ पर उषा कौर आप लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, आज उषा कौर हमारे साथ इस प्रोग्राम में। हाँ जी, और यहाँ पर हम बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि आज हम बताएंगे, बात करेंगे सुनील शेट्टी के बारे में। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है, लेकिन सिर्फ उनका नहीं, अभी 14 अगस्त तक हम मनाएंगे काफ़ी सितारों का जो जन्मदिन है, उनका जन्मदिन हम मनाएंगे। और जेनिफर फर्नांडिस भी है, और अनिता राज है, उनका भी जन्मदिन है, सुनील चौहान है। सबसे पहले सुनील शेट्टी के बारे में हम बात करेंगे, तब तक उन खूबसूरत गानों का मज़ा लीजिए।

0: के सितारे।
1: चार बजकर 21 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, बॉलीवुड में कुछ चेहरे सिर्फ अपनी अदाकारी से नहीं बल्कि अपनी सादगी और मजबूत शख्सियत से भी याद रह जाते हैं, और सुनील शेट्टी उन्हीं कलाकारों में से एक है। उनका अंदाज हमेशा थोड़ा अलग रहा, पर पर्दे पर मजबूत और जिंदगी में अपने उसूलों के करीब। जी हाँ, उन्होंने अपने सफ़र में एक्शन से लेकर जज्बाती किरदारों तक कई रंग दिखाए। उनकी आवाज़, उनकी शख्सियत और उनका संजीदा अंदाज उन्हें दूसरों कलाकारों से अलग पहचान देता है। जी हाँ, सुनील शेट्टी के कहानी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए टक्कर फिल्म से लिया गया। चलिए सुनते हैं ये गाना कुमार सानू की आवाज़ में। और चलिए, अगर आप लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं, घर जा रहे हैं वापस काम से, तो हम आपको कहेंगे ड्राइव केयरफुली, बस खूबसूरत गानों का मज़ा लीजिए। हम आपका साथ देंगे 6 बजे तक।

4:32 हुए हैं। श्रोताओ, आज करते हैं बात बॉलीवुड के उस कलाकार की जिन्होंने अपनी सादगी, मजबूत शख्सियत और बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई। उनका सफ़र जो है सिर्फ पर्दे पर एक नायक बनने का सफ़र नहीं था, बल्कि मेहनत, अनुशासन और अपने उसूलों पर कायम रहने की कहानी भी है। सुनील शेट्टी, अगर आप उनके जो इंटरव्यूज़ देखेंगे ना, तो सब लोग कहते हैं चलो उनका जो उम्र तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे का वैसा रह रहा है जवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शराब नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पी, हाथ भी नहीं लगाया, और शायद इसी वजह से कि वो आज एक साफ ज़िंदगी जीते हैं, हेल्दी खाते हैं और मेहनत भी बहुत किया, तो इसीलिए शायद आज भी वो जवान लगता है ना। और उनके सभी फैंस के लिए जो हमें सुन रहे हैं इस समय, सुनील शेट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चलिए अगला गाना सुनते हैं। कुमार सानू, साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: आपके सितारे
2: 4:51 श्रोताओं सुनील शेट्टी और उनकी ज़िंदगी। जी हाँ, एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है, जब इरादे मजबूत हो तो रास्ते भी मुश्किलें इंसान को रोक नहीं सकती बल्कि और मजबूत बनाती है। और सुनील शेट्टी साहब ने अपनी पहचान सिर्फ फिल्मों में से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, सादगी और लगन से बनाई, इसलिए उनका सफ़र हमें कहता है कामयाबी का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, बस मेहनत करते रहिए और वक्त को अपना जवाब देने दीजिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कहा उन्होंने। और चलते हैं, उनका गाना हम सुनेंगे और 5 बजे, जी हाँ 5 बजे के बाद एक और सितारे के बारे में हम बात करेंगे और वो है अनीता राज, क्योंकि 14 अगस्त को वो अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आपके सितारे
4: 5:04 हुए हैं दोस्तों. जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हम आपका साथ देते हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर, और आप सुन रहे हैं आपके सितारे कार्यक्रम. इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर. जी हाँ, सुनील शेट्टी के बारे में हमने बात की क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और 13 अगस्त को एक और महान कलाकार का जन्मदिन है और वो है अनीता राज. आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की जिनकी मुस्कुराहट सादगी और अदा ने दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई. 13 अगस्त 1962 को जन्मी अनीता राज ने अपने फिल्मी सफर में कई यादगार किरदार निभाए. उनकी अदाकारी में एक अलग ही नज़ाकत थी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि जब वो पर्दे पर आती थी नज़रें खुद पर ठहर जाती थी. और उनका दौर सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था बल्कि वो ज़माना था जब कहानी, गीत, संगीत और अदाकारी मिलकर सिनेमा को एक खूबसूरत एहसास बना देते थे. अनीता राज ने इसी दौर में अपनी एक पहचान बनाई और आज भी पुराने सिनेमा के चाहने वाले

मोहब्बत और इज्जत से याद करते हैं तो आज उनका उनकी बातें हम करेंगे और खासकर गाने उनके हम चलाएंगे बस एंजॉय कीजिए ज़मीन आसमान का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं

0: RM3 Radio. Radio.
1: आपके सितारे
2: 5:16 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस खास रेडियो कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के बारे में, और वो है अनिता राज। 1980 के दशक में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म माहौल में पली बड़ी अनिता राज ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की और बहुत जल्द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। और अनिता राज की खूबसूरती के साथ साथ उनकी एक्टिंग भी खूब तारीफ हुई। उन्होंने एक रोमांटिक, फैमिली ड्रामा और एक्शन जैसे अलग अलग तरह के किरदार निभाए। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में वो है प्रेम गीत है, ज़रा सी जिंदगी, दुल्हा बिकता है, जी हाँ मास्टर जी, गुलामी, इल्ज़ाम और पति पत्नी और तवाइफ जैसे नाम शामिल है। ख़ास तौर पर जब फिल्म प्रेम गीत ने अनिता राज को दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया था, और इस फिल्म के गाने और कहानी दोनों के को लोगों ने पसंद किया, और अनिता राज का नाम 1980 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल हुए। और चलिए यहाँ पर जसवंत सिंह और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में सुनते हैं ये

0: लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है।
1: अरे लो ना कंबल, से भी कोई जिद है।
2: और तुम?
1: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
2: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
1: कल तक कोई नहीं था लेकिन अब है, कोई शक?

0: RM3 Radio. Radio.
1: आपके सितारे
2: श्रोताओं, अपने फिल्मी करियर के दौरान अनीता राज ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और सादगी भरी अदाएं उनकी खास पहचान बन गई। लेकिन हर कलाकार की जिंदगी में एक वक्त आता है जब प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी एक नई दिशा लेती है, और अनीता राज ने भी शादी के बाद अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान दिया। उनके पति सुनील हिंगोरानी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं, और समय के साथ अनीता राज ने फिल्मों के साथ टेलीविज़न की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बाद के वर्षों में उन्होंने टेलीविज़न सीरियल्स में भी काम किया और नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, अनीता राज की कहानी हमें ये बताती

0: है कि सिनेमा की दुनिया में सफलता सिर्फ खूबसूरती से नहीं मिलती, उसके लिए हुनर, मेहनत, अनुशासन और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की क्षमता भी जरूरी होती है। चलिए आज के इस आखिरी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। जी हाँ, गुलामी फिल्म से लिया गया ये गाना, और इसके बाद आप सुनेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ, और ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे समाचार, और मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। लेकिन हमारी मुलाकात होगी आज, जी हाँ, 6:30 बजे नई सोच कार्यक्रम और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ। तब तक आप इस गीत को एंजॉय कीजिए और गुनगुनाइए, और एम फ्री के साथ हमेशा जुड़े रहिए।
1: जाओ सुमित्रा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
2: मगर मोरा, हमें जाने कितना समय लग जाए।
1: पूरे जन्म से ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.
3: नमस्ते, हमारे धरोहर में आपके स्वागत बा. आज हमने अगस्त महीना के जो एगो खास विशेषता है ओकर पर बतियाब जा. अगस्त के महीना भारत में आंदोलन के महीना से जानल जाला. दरअसल 1942 में अगस्त महीना के शुरू में गांधी जी अंग्रेज लोग के खिलाफ अपन आखिरी पड़ाव भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट चला ले रहलन. और ये वजह से अगस्त के क्रांति अगस्त महीना भी बोलल जाला. आज़ादी खातिर तरस गल रहल करोड़ों देशभक्त लोग इ आंदोलन के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन के नींव के हिला के रखते ले रहलन सा. बाद में इ आंदोलन के ही बल पर 1947 में भारत के आज़ादी मिलल. भारत छोड़ो आंदोलन भारत के हर 8 अगस्त के मनावल जाला. कहे कि 8 अगस्त 1942 के ही अखिल भारतीय कांग्रेस में हुआ के बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर में भइल. महात्मा गांधी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस के समिति 8 अगस्त के स्वीकार कर ले रहल. और फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होल. क्रिप्स मिशन के दौरान भारत जब खाली हाथ वापस लौटल तब भारतीय लोग के ये एहसास होल कि भारतीय लोग पर छल करल जाता. क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद गांधी जी एगो बड़ा आंदोलन शुरू करलन और भारत छोड़ो आंदोलन नाम एक दिवल गल. दूसरा विश्व युद्ध के वजह से परिस्थिति और गंभीर होकर रहल. जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर मलाया और बर्मा पर कब्जा करके भारत के ओर बढ़त रहल. और उही समय में युद्ध के वजह से सब चीज के दाम एकदम बढ़ गया रहल. और इस सब कारण खातिर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता एकदम नाखुश हो गया रहल. महात्मा गांधी द्वारा चलावल गल ई आंदोलन के दुगो मुख्य प्रवृत्ति रहल. पहला रहल स्वयं एगो धार्मिक व्यक्ति रहला पर भी ओ अपन संघर्ष में धर्म के नयनलन. दूसरा बगल गांधी जी अंग्रेज साम्राज्य के मुख्य दुश्मन के तरह प्रस्तुत करलन. बड़ा संख्या में जनता ई खातिर ई आंदोलन में शामिल होलन सा कहे कि उ लोग मानत रहलन सा कि अंग्रेजी लोग ही भारत में दरिद्रता गरीबी और सब समस्या अनलेबा. उनकर आंदोलन के हर शब्द भारत के कोना कोना के लोग तक पहुँचल. उ लोग के हौसला दिलक कि भारत के अच्छा दिन अंग्रेज के गैला के बाद ही आई. और यही दिशा में पूरा भारत आगे बढ़ल. कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद. नमस्ते, कल फिर मिलब जा.

नमस्कार, मंगलवार 11 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने बेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवासीय लीज की दरों में संशोधन की घोषणा की।

40,000 से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले इन नए कदमों का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की मदद करना और अनियमित स्थितियों को सुधारना है। देश के दक्षिणी हिस्से में तटीय क्षेत्र और लासूजिन शमशान घाट तक स्थायी पहुंच तब तक जारी रहेगी जब तक दूसरा मार्ग पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। एबेन में भूमि और आवास मंत्री और ईओ एग्री के प्रतिनिधियों की

0: हफ्ते तक जारी किया जाएगा। और कोलंबिया में आए भीषण भूकंप के कारण कम से कम 160 लोगों की मौत हो चुकी है और आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। कोलंबिया में आए पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े भूकंप के बाद कम से कम 160 लोगों की मौत हो चुकी है और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ज्यादा जानकारी गीता सुनाराम के साथ।
1: कोलंबिया में आए जबरदस्त भूकंप से देश का एक बड़ा हिस्सा हिल गया है। ये 21वीं सदी में दक्षिण अमेरिकी देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है, जिसके कारण कई शहरों में इमारतें ढह गई हैं। अब तक कम से कम 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 570 घायल हुए हैं। 2700 लापता हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव दल और स्थानीय लोग मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। भूकंप के बाद 21 झटके महसूस किए गए हैं। देश के राष्ट्रपति ने बताया कि भूकंप और झटकों से कम 1575 घर, 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कम से कम 61 इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। 3 दिन पहले शपथ ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मलबों में फंसे लोगों को बचाना प्राथमिकता है। भूकंप का केंद्र प्रशांत क्षेत्र के पास था, जो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। सबसे ज्यादा असर चोको इलाके में हुआ, जो कोलंबिया के सबसे गरीब और घने जंगल वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ ज्यादातर जगहों तक सिर्फ नाव या हवाई जहाज से पहुँचा जा सकता है, इसलिए नुकसान का सही आकलन करने में मुश्किलें आ रही हैं। अमेरिका स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और कोलंबिया के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने $15.5 मिलियन की आपात सहायता देने की घोषणा की है। इसराइल, मेक्सिको, इक्वाडो और फ्रांस ने भी मदद देने का प्रस्ताव रखा है।
0: आवासीय प्रयोजनों के लिए बिल्डिंग साइट लीज यानी आवासीय उपयोग के लिए लीज, जिसके तहत सरकार घर बनाने के लिए जमीन के इस्तेमाल की अनुमति देती है, के लिए दरों में एक नया संशोधन किया गया है। भूमि और आवास मंत्री के अनुसार ये नए कदम 40,000 से अधिक व्यक्तियों से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के प्रयासों का समर्थन करना और अनियमित स्थितियों को सुधारना है। शकील मोहम्मद ने आज सुबह एबन में एक प्रेस सम्मेलन लगाया। देश के दक्षिणी हिस्से में तटीय क्षेत्र ओलासुजिन शमशान घाट तक पहुंच, दूसरा पहुंच मार्ग पूरी तरह से तैयार होने तक अस्थायी पहुंच को बरकरार रखा गया है। एबेन में आज सुबह ईओ आग्री के प्रतिनिधियों और भूमि एवं आवास मंत्री के बीच हुई बैठक में ये बात सामने आई। तट के इस हिस्से के लिए एक विकास योजना तैयार करने हेतु बातचीत अभी जारी है। श्रम मंत्रालय में बैठकों के एक दौर के दौरान सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद ट्रेड यूनियन नेता आत्मा शांतो ने दोपहर की शुरुआत में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। आत्मा शांतो द्वारा उठाए गए औद्योगिक संबंधों के मुद्दों को सुलझाने के लिए 3 कंपनियों के अधिकारियों द्वारा ठोस प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गईं। इसके अलावा श्रम मंत्री ने साल के अंत तक एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधनों की घोषणा की है। आज से 25 साल बाद मॉरिशस गणराज्य कैसा दिखना चाहिए, विजन 2050 द्वारा उठाया गया ये केंद्रीय सवाल है, जो देश के दीर्घकालिक बड़े दिशा निर्देशों को तय करने के लिए बनाई गई एक रूपरेखा है। ये महत्वाकांक्षा 3 प्राथमिकताओं पर आधारित है, समृद्धि, समावेशिता और स्थिरता। विजन 2050 के मसौदे को इस मंगलवार पोटली में संसद सदस्यों के सामने पेश किया गया। अंतिम दस्तावेज इस महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया, एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए। छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर युवाओं ने लैंगिक समानता के लिए एक चार्टर प्रस्तुत किया और इस दिशा में काम करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता जताई।
1: क्या लैंगिक समानता की शुरुआत हमारे नजरिए में बदलाव से हो सकती है? उन शब्दों से जिन्हें हम चुनते हैं, उन व्यवहारों से जिन्हें हम स्वीकार करते हैं और उन रूढ़िवादी धारणाओं से भी जिन पर हम सवाल उठाने का फैसला करते हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय में युवाओं को इस बदलाव में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया उनके सामने एक अहम सवाल रखा गया। मॉरिशस में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए वे ठोस तौर पर क्या कर सकती

0: ईशा रंगलाल कहती हैं, हम नहीं कहते कि एक दूसरे से बढ़कर हैं, साथ मिलकर चलना चाहिए जिससे प्रगति हो। हमदान रामदाहन कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए कई संस्थाएं हैं, लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर हैं। हर एक छात्र को अपनी भूमिका जाननी चाहिए जिससे असमानता को दूर कर सके। रविश जगन कहते हैं, जेंडर को लेकर हम में असमानता है, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं। इसके लिए एक सीमा है, समानता और मौका सभी को देना चाहिए। मानसिकता में बदलाव लाना, रूढ़िवादी धारणाओं पर सवाल उठाना और सबसे महत्वपूर्ण, बदलाव के केवल दर्शक बनकर रह जाना, यही संदेश गणराज्य के राष्ट्रपति ने भी दिया। उनका कहना है कि इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति धर्म गोकुल कहते
1: हैं,
0: विचारधारा महत्वपूर्ण है। नौजवानों को पारस्परिक सम्मान की भावना अपनानी चाहिए। मानव सम्मान महत्वपूर्ण है। जेंडर इक्वालिटी राष्ट्र एकता मजबूत करने और समावेशन में भारी योगदान देती है। हालांकि इस बदलाव को वास्तव में स्थायी बनाने के लिए जिम्मेदारी केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहती, पुरुषों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ताकि रूढ़िवादी धारणाओं को खत्म किया जा सके और एक ज्यादा समानतापूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन की मोहिनी बाली कहती हैं, पुरुषों और नौजवानों की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। पुरुष को समस्या का कारण बताते हैं, लेकिन वे समाधान का हिस्सा भी हैं। इसलिए नौजवानों को हानिकारक मर्दानगी के बारे में समझाना चाहिए और क्या करना चाहिए इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। शिक्षा से लेकर रोजमर्रा के व्यवहार तक युवाओं से अपेक्षा की जा रही है कि वे पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाएं और अपनी आवाज बुलंद करें। अब लक्ष्य है बातचीत को ठोस कार्यों में बदलना और लैंगिक समानता को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना।
2: और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि श्रम मंत्रालय में बैठकों के एक दौर के दौरान सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद ट्रेड यूनियन नेता आत्मा शांतो ने दोपहर की शुरुआत में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। आत्मा शांतो द्वारा उठाए गए औद्योगिक संबंधों के मुद्दों को सुलझाने के लिए तीन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा ठोस प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गईं। इसके अलावा श्रम मंत्री ने साल के अंत तक एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधनों की घोषणा की है, उनको सुनते हैं।
3: La direction de Inodis Limité pour faire un collective bargaining, leur question de salaire, le cas de outrigger qui nous fait bien sûr soulever et le management fin accepter qui régler le problème d'ordre relation industrielle. Dernier employé qui fin est présent, que nous fin cause le problème de comité disciplinaire, l'indépendance du comité disciplinaire, et là est dans un rapport qui peut soumettre le ministre par l'employeur concerné, fait un dénouement. Vous pensez que c'est la fin de la grève qui est au fin entamée?
2: आज से 25 साल बाद मॉरिशस गणराज्य कैसा दिखना चाहिए? विजन 2050 द्वारा उठाया गया ये केंद्रीय सवाल है, जो देश के दीर्घकालिक बड़े दिशा निर्देशों को तय करने के लिए बनाई गई एक रूपरेखा है।
4: उन्नति, समग्रता और टिकाऊपन, ये भावी दशकों के लिए मॉरिशस के विकास को निर्देशित करने वाली तीन अहम स्तंभ हैं। विजन 2050 का मकसद अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करना, सामाजिक समावेशन को मजबूत करना और देश को जलवायु, ऊर्जा तथा तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। लेकिन 2050 तक की इस रूपरेखा के साथ स्वाभाविक रूप से संसाधनों का सवाल भी उठता है, चाहे वित्तीय हो, संभार तंत्र, विशिष्टता इत्यादि। ओशन इकोनॉमी एजेंडा में ऊपर है।
5: Big oceans, the ocean economy is very high on the agenda.
6: Pour moi, l'avenir de notre pays.
4: देश का भविष्य अन्य देशों के साथ साझेदारी पर निर्भर करेगा।
5: What I haven't heard is...
4: कौन से कदम लागू किए जाएंगे, क्योंकि 2050 तक पहुंचने में और 24 साल हैं, मूल ढांचों पर काम कब शुरू होगा?
7: With the Mauritius Vision 2050, Mauritian women.
4: विजन 2050 में मॉरिशन महिलाओं की बेहतर भूमिका हो सकती है, अर्थतंत्र, राजनीति, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप में भी।
5: All this economic development is great.
4: सब आर्थिक विकास अच्छी बात है, लेकिन यदि जनता पर

0: इसका लाभ नजर न आए तो ये बेकार है।
1: We have to have clear cut target.
0: स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अन्य सवाल, इसकी क्या गारंटी होगी कि आज ऐलान किए गए ये उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए साकार किया जाए।
1: In terms of governance,
0: शासन के स्तर पर क्या मंत्रालय ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यों में तालमेल हो।
2: Every line ministry will do what they are doing today.
0: तालमेल होना चाहिए, इसकी देख रेख की जाएगी कि यदि कॉन्फ्लिक्ट हो तो उन्हें सुलझाया जाए।
1: What about the institutional alignment?
0: संस्थागत समरूपता का क्या समन्वयन कैसे होगा केंद्रीय सरकार के साथ 2050 को लागू करने के लिए।
2: There will be a separate chapter on Rodrigue. So Rodrigue has its own specificity and
0: Rodrigues पर एक अलग से अध्याय होगा। Rodrigues की अपनी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी विजन 2050 की रूपरेखा की तैयारी कई महीनों के इलाकाई तथा राष्ट्रीय सलाह मशवरे के बाद की गई है। एक ड्रग्स रहित देश, खाद्य सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, सुरक्षा, ऊर्जा और पानी चिंता के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। मंत्री ज्योति जितेंद्र ने कहा, सभी टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन 80 अर्जियां प्राप्त हो चुकी हैं। नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी है जो विजन 2050 योजना को 5 साल या 3 साल की योजना में अलग अलग करेगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यान्वयन की एक स्ट्रैटेजी हो। विजन 2050 देश की जीडीपी को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। हमारे आर्थिक आधार को मजबूत करते हुए, विकास के नए स्तंभों की ओर उन्मुख होते हुए और रोजगार प्रस्तावित करते हुए सभी के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करते हुए।
3: और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि श्रम मंत्री ने साल के अंत तक एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधनों की घोषणा की है। इस पर श्रम मंत्री रेजा उत्तम को सुनते हैं।
4: C'est pas normal qu'il y ait une syndicaliste bien fait la grève de la faim pour qui patronat réagir. Connaissez qui Atma Chantin demandait, c'est une amélioration de bonne relation industrielle. Et tant qu'il y a un employeur pas pour comprendre qu'il est dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt de l'entreprise qui a un travailleur heureux, pas pour un développement. Par exemple, c'est un employeur qui m'a dit, et dans tous les trois cas, c'était même affaire, une relation industrielle tendue. Le gouvernement pour venir avec un amendement au Workers' Rights Act et Employment Relations Act. D'ailleurs, nous avons un national Tripartite Council qui nous aide chaque mois, qui déjà nous paye, travaille aux bonnes propositions.
3: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही राम भजनम की परंपरा तेलुगु समुदाय के भीतर एक विशेष स्थान रखती है। भक्ति गीतों और सीखने की प्रक्रिया के बीच इस विरासत को संरक्षित करने और युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आज कई पहल बढ़ रही हैं। राम भजनम को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। गीता सुनारान।
5: भजन और संगीत एक के बाद एक जुड़ती धुने और एक ऐसी परंपरा जो आज भी जीवित है। राम भजनम भगवान राम को समर्पित है, जिसमें पीढ़ियों से चली आ रही भक्ति गीतों की परंपरा शामिल है। ये परंपरा भारत से मॉरिशस तक पहुंची और आज मॉरिशस के तेलुगु समुदाय की संस्कृति में गहराई से बसी है। विदेश वेंकटा स्वामी कहते हैं,
6: In the evening at 6.
5: राम भजनम शाम 6 बजे शुरू होता है। इसमें कई चरणों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, जैसे नित्य पूजा, दिए जलाना और अखंड भजन, जो मध्य रात्रि तक चलता है। मध्य रात्रि को मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। इसके बाद और अखंड भजन किए जाते हैं जो सुबह 6 बजे तक चलते
6: हैं।
5: लेकिन इस परंपरा को जीवित रखने के लिए इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत आज कुछ मंदिरों में राम भजनम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूपशिखा कहती है, हर रविवार को वे राम भजनम

0: में आती हैं, ये आध्यात्मिक हैं। दृष्टि कहती हैं कि वे हमेशा से राम भजनम सीखना चाहती थी, एक गुरु ढूंढ रही थी, अब मौका मिला। इस परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। राम भजनम को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने की दिशा में पहल की जा रही है। इस परंपरा को लेकर समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मॉरिशस तेलुगु कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की सदस्य नालिनी तुतिया कहती है, यूनेस्को में राम भजनम को शामिल करने का उद्देश्य है मॉरिशस में सांस्कृतिक संतुलन लाना। कई चरण हैं जिनका पालन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मॉरिशस में समुदाय में लोग राम भजनम कैसे करते हैं। आज इन प्रयासों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये सिर्फ भजनों और प्रार्थनाओं की बात नहीं है, बल्कि तेलुगु समुदाय की पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने का सवाल भी है।
1: रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कुछ दिनों से तिथि और चंद्र ग्रहण की आशंका से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इस संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने आज एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। सदस्यों ने स्पष्ट रूप से सूचित किया कि रक्षाबंधन की तिथि आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त ही है और किसी भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस त्योहार पर नहीं पड़ेगा। अशिता रखू।
2: आधिकारिक तौर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने पंचांग तथा प्रमाणित पंडितों और आचार्यों के उच्च परामर्श के बाद त्योहारों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन हेतु अपनी कटिबद्धता दोहराई है और जनता को आश्वस्त किया है कि रक्षाबंधन का उत्सव सुचारू रूप से मनाया जाएगा और किसी भी भ्रम का समाधान पूरी गंभीरता से किया गया है।
3: व्रत त्योहार और सभी पूजा की तारीखें जो है काउंसिल ऑफ प्रीस मॉरिशस जो है द्वारा तैयार की जाती है और फिर भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय से उनकी पुष्टि की जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्हें तैयार की जाता है। रक्षाबंधन जो है फ्राइडे 28 अगस्त को हम सभी लोग मना रहे हैं।
2: महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस अवधि के ठीक बाद सूर्योदय होगा, जो समय अमृत यानी शुभ माना जाता है, इसलिए रक्षाबंधन के उत्सव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4: भद्रा एक अशुभ समय में आपको कह सकता हूँ, भद्रा हमारे शास्त्रों में और पंचांगों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भद्रा को हमें छोड़ना चाहिए। 27 को गुरुवार के दिन 27 को सुबह से ही भद्रा है और पूरा दिन भर भद्रा है। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटा पहले उसका सूतक शुरू होता है अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र के हिसाब से, तो इसलिए उस दिन पूर्णिमासी का जो व्रत है लोग व्रत करेंगे लेकिन पूर्णिमासी के चंद्रमा का पूजन नहीं करेंगे। चंद्रमा पर ग्रहण है मॉरिशस में सुबह 5:23-5:25 के आसपास थोड़ा सा दिखेगा, तो क्योंकि सूर्योदय होने के बाद हमारा दिन जो शुरू होता है वो सूर्योदय होने से शुरू होता है, तब भी शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि ग्रहण में और रक्षाबंधन किया जाता है।
2: इसी अवसर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन अगले 23 अगस्त को सुबह 9:30 गंगा तालाब के डिवाइन म्यूजियम के निकट 5 मुखी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा का आयोजन भी कर रहा है।
1: और आखिर में चली जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। रात के दौरान पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। कल दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और उत्तर पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और

पूर्व के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:33 पर सूरज उगेगा और शाम 5:55 पर सूरज ढल जाएगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को इनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:22 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। बनान क्लूनी में 69 साल के 69 years old के श्री देवानंद रघु, जो राजेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले क्यूपिप कृषि में के पुराने कर्मचारी थे। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे सत्यम शर्मा रघु के घर बनान क्लूनी से उठाकर क्लूनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। अवेन्यू राजकुमार लेन बेतो काट्रोबोन में 79 साल की 79 years old की श्रीमती चंद्रावती मेराय, पैदाइशी नाम जावक और जुलुलु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन की 1:30 बजे उनके घर अवेन्यू राजकुमार लेन बेतो काट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30। रॉयल रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया में 83 साल के 83 years old के श्री महेंद्र सिंह बावानीपेक, जो दाऊदर नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रारोद मर्द ऑस्ट्रेलिया से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। टेम्पल रोड थ्वाबुचिक में 52 साल की 52 years old की श्रीमती लक्ष्मी करुणदास अचामा, पैदाइशी नाम मूलिया और जो प्रिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनकी माँ सीला मुलिया के घर टेम्पल रोड थ्वाबुचिक से उठाकर प्लेन मानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30। पेलग्रेन रोड सेवास्तोपोल में 61 साल के 61 years old के श्री ऋषि कुमार गोपाल, जो ऋषि नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे सेवास्तोपोल के फिलिंग स्टेशन तुताल के मालिक थे। उनकी अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनकी अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनके भाई हरिदत्त गोपाल के घर पेलग्रेन रोड सेवास्तोपोल से उठाकर सेवास्तोपोल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे एट 10 AM। नंबर 21 पालमा रोड काट्रोबोन में 66 साल के 66 years old के श्री विनोद कुमार बुलक, जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर नंबर 21 पालमा रोड काट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: 7:05 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन RM Free Radio रेडियो मनोरंजन। जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और आप साथ दे रहे हैं। वैसे आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम आज एक महान कलाकार का जन्मदिन मना रहे हैं, तो आज उनके ही गाने हम चलाएंगे। बस होप यू विल एंजॉय। और वो कलाकार है सुनील छेत्री। आप अपना डेडिकेशन कर सकते हैं ऑन 5250620044 जी हाँ 4028070। आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम आपके गाने चलाएंगे ज़रूर, लेकिन जो प्लेलिस्ट हमने आप लोगों के लिए बनाई है उसको आप लोग खूब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द।

चलिए अगला गाना हम सुनने जा रहे हैं फिल्म क्रोध से लिया गया जी हाँ और गाना साधना सरगम रोहित कुमार राठौर और इस फिल्म में नजर आए थे सुनील शेट्टी साहब और साथ में हम गाना चलाएंगे खासकर रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा और कौशिक के लिए जो सुन रहे हैं यूके से धन्यवाद साथ देने के लिए

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: RM3 Radio. दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
2: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 7:50 हो गई है जी हाँ दोस्तों, और गाना हम चलाएंगे खासकर अमृता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम ओकुले, और गाना खासकर जाएगा उनके बेटे अरविंद और बेटी अनुषा। अभी तो हम स्टूडियो में हैं और हमने सुना है कि बाहर बारिश हो रही है, तो चलिए इस बारिश मौसम में बहुत ही प्यारा गाना हो जाए टक्कर फिल्म से लिया गया, और वो भी सुनील शेट्टी के बड़ा ही फैन है।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर सोनल के लिए अगला गाना जाएगा बड़े दिल वाले और गाना वो खासकर मांग रहे हैं अपने भाई श्रावण के लिए भाभी कीर्ति अभिनव अकियान नव्या और तिलक फैमिली के लिए और वो सुनील छेत्री को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं चाहे वो हमको नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हमारी जो दुआएं हैं हमेशा उनके साथ है क्योंकि बचपन में जवानी में उन्होंने हमें बहुत ही एंटरटेन किया है अपने फिल्मों के ज़रिए है ना जब और आज भी अपने गानों के ज़रिए आज भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं

8:07 हुए हैं, यहाँ पर हमें सुन रही है अनीता जी। जी हाँ, आपके सिलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद आपको। और आप सुन रही है फ्रॉम क्यूपिप, और एक और अनीता है और वो है फ्रॉम फिकॉन्फ्ला। क्या बात है, गाना वो मांग रही है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, ये गाना जाता है आपके नाम और हमारे तमाम सुनने वालों के नाम।

You're listening to RM3 Radio.

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

जी हाँ दोस्तों, आज बजकर 55 मिनट हुए हैं और यहाँ का अगला गीत हम चलाएंगे दारेन स्वेतारा विश प्रेशा लव लव शाह और साथ में है अपाडू फैमिली जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम होशनुआ और साथ ही साथ में रेहाना के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम फेनिक्स और खासकर गुलशन भोला के लिए गाना मांग रही हैं अपनी मामा प्रभा बहन दीक्षिता आयशा बोला फैमिली के लिए। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला दोस्तों, आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि।

Center 95.5, North South 95.6, East West 98.6.

आप सब कोई के नमस्ते। रात के 9:03 होलबा और ई बखत आप सुनत हवा अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी दर का आपके ही मनपसंद चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। आज मंगर के दिन है, मंगर के सांझ हो गल बा और तारीख है 11 अगस्त 2026। हम किरण आप सब कोई के आज के ई भोजपुरी दर का प्रोग्राम में स्वागत करत हैं। आशा करत हैं कि भले ही थोड़ा बहुत ठंडा करता लेकिन आप लोग के स्वास्थ्य अच्छा बा, पानी भी थोड़ा मिल ले जाता, अच्छा संकेत बा। तो आज के ई सांझ के शुरुआत शुरू करब जा रंभा राम तोहल की आवाज़ में जुबेदा लुतुले के जाए ई गीत के साथ और आपके फरमाइश के इंतज़ार रही, अपन फरमाइश भेजा जा।

हमने के प्लेलिस्ट के सबसे मशहूर गीत में से एक छोर के मोरिस्वा ये गीत सुने के इच्छा रखा था वन भाई अब्बू, हमेशा की तरह अबू अफेज अयाज जहीरा रईस काला छोटी, उनकर दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम भाई अबू के ओर से आप सबके भी नाम जे लोग ई बखत ई प्रोग्राम सुना था वजह और जे लोग फोन नहीं करे लजा लेकिन ई सब गीत के भरपूर आनंद उठावे लजा।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here.

जैसे आपके अभी जो धुन बा ओकर से इशारा मिल ही गल हुई कि अगला जो गीत चली वो एगो ललना हा। आज जितना भी घर में जितना भी परिवार में एगो नवा मेहमान के स्वागत करल जाता वो मेहमान के स्वागत में भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से एगो ललना आप सब कोई के नाम और बहुत बहुत शुभकामना के साथ। ललना के गीत चलावे चाहत हवन शीला अपन उनकर एगो नातिन आल हवन और लोखन परिवार में विकेश के घर में एगो सीता के जन्म होलबा और विकेश के और उनकर पत्नी के बहुत बहुत बधाई। उनकर माताजी गीता उनकर सब भाई सब बहन सब जीजाजी और ख़ास तौर पर उनकर फूफू शीला फूफा सुरेन बेल्जिक से उनकर चाचा सुरेश चाची शोभा पेरिस से उनकर चाचा विद्युत और उनकर चाची प्रेमिला और जितना भी भाई बहन कुज़ैन कुज़िन चाचा चाची मौसा मौसी जितना कोई भी बा सब के ओर से पूरा लोकन परिवार के ओर से विकेश और उनकर पत्नी के बहुत बहुत बधाई। साथ में बहुत बधाई दादी के बहुत दिनों बाद आप दादी बनला त आपके नाम ई अगला ललना। और विकेश के साथ साथ जितना कोई के आंगन में भी एगो नवा मेहमान आल होई चाहे उस सीता के रूप में रही चाहे राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में आप सब कोई के बहुत बधाई। आपके जो नवा मेहमान बा आपके जीवन में बहुत खुशी लाए आपके नाम रोशन करी और आप भी लड़का के उतने ही प्यार और आशीर्वाद से बड़ा कर बा जितना कि ई 9 महीना आप ओकर आवे के ई धरती पर इंतज़ार कर ला। तो चला आप सब कोई के बहुत बहुत बधाई और ई ललना आप सब कोई के नाम।

9:39 मिनट होल बा और जोन दो तीन गो गीत अभी जोशीला गीत चलल ई आप सब कोई के नाम जेकर घर में धूम मचल बा, जेकर घर में खुशी के माहौल छैले बा, ओ चाहे कोनो नवा मेहमान के स्वागत खातिर रही, चाहे जन्मदिन के अवसर पर आप लोग के घर में एक खुशहाली छायल होए, या फिर आपके घर में अभी शादी के माहौल शुरू हो गल बा या फिर भरपूर चला था, आप सब कोई के नाम ये गीत रहल। और अगला जोन गीत चली ये हंसले अपन सास के नाम मांगत हवन और प्रेमीला जी के नाम हंसले के ओर से ला फ्रांस।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one station.
4: और जन अगला गीत चली विनोद सिद्दत के आवाज़ में, बाप दादा लोग के बोली। और ये गीत सुने चाहता था वन फोंजुसाक से उमा जी जिनकर तबीयत उतना ठीक नहीं रहल ये पिछला दिन, लेकिन यही हमने के शुभकामना बा, यही आशीर्वाद और प्रार्थना बा कि आपके सेहत बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। तो उमा जी, आपके पसंद के ये गाना आपके नाम।

10 बजे में लगभग 7 मिनट कमती बा और आप लोग के फोन कॉल्स ले जाता है एक के बाद एक आप लोग के बहुत बहुत शुक्रिया और अगला जन गीत अभी चली ई गीत के फरमाइश कर ले हवन एगो छोटा लड़का 9 बरिस के चेतवीर मोहन जे हमने के काजियन क्यूबिप से सुना था वन और चेतवीर मोहन बोला था वन कि उनकर घर में आज

दुगो बड़ा मौका चलता। एक तो उनकर चाचा दीपक आज रवाना होइलन फ्रांस खातिर, और आप चाहत हवा कि आपके चाचा दीपक खातिर एगो गीत चलावब नया सिरे। और साथ में आज चितवीर के बहिन, बड़ा बहिन के जन्मदिन बा, तुष्टि के जन्मदिन, और इनकर खातिर एगो जन्मदिन के गीत बसंत सुपोल के आवाज़ में हैप्पी बर्थडे। तुष्टि के साथ साथ जितना कोई भी आज अपन जन्मदिन मनावत हवा जा आप सब कोई के नाम, और तुष्टि के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई चितवीर मोहन के ओर से, उनकर दादी इंदिरा, भाविया, अक्षिका, आदेश और दीपक के ओर से।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: रात के 10:06 होल बा अगला गीत नाको के फोलिया गिरता था गिरे दे और संभावती दुमन के आवाज़ में ये गीत सुने चाहता हवन ललिता जी और ये गीत आप अपन बहिन लोग के नाम करत हवा सुदेवी छोटी प्रभावती ज्ञानी माला राम जावन आत्माराम भैया हरीश भैया और जितना कोई अभी आपके सुनत हवन जा सब कोई के नाम और संभावती दुमन के आवाज़ में ये गीत आप सब कोई के नाम जेकर ई मन पसीन गाना है।

अंग्रेजन गीत चली बिस्वानी दीपा की आवाज में लीलो सड़िया। ये गीत वाशेरी के कल्याणी जी के नाम और घोंगोब के सुनीता जी के ओर से, उनकर बहिन विमाला के नाम जे कोंगोमा से हवन, और साथ में खास तौर पर से जमील फॉरेस्ट से शांता सुकारी जी के ओर से उनकर पूरा परिवार के नाम, उनकर बेटा रवीन, उनकर पतो किरण, बेटा सुदेश और पूरा परिवार के नाम बिस्वानी दीपा के आवाज़ में ये सुंदर गीत जोन साड़ी परवा।

पूर्णिमा फोकिरा के आवास में गावल ई ललना आप सब कोई के नाम जे लोग के घर में ललना गवावे के इंतजाम हुआ था और होलबा और खास तौर पर ई गीत खुद पूर्णिमा जी के नाम जे हमने के ई बखत सुना था वन

0: रात के 10:20 हुआ था और अगला गीत बाजा बोल ई दुनिया बा चारों तरफ गोल सुना नोयान की आवाज़ में। ये गीत सुने चाहता वन रोजिल से सजीद। सजीद अपन हर गो फरमाइश अपन पुराना दोस्त सरोवर के नाम करेलन जे कनाडा में हवन। तो सजीद जी, आपके पसंद के ये गीत आपके नाम और आपके दोस्त के नाम।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक बार फिर नीतू आपके समक्ष रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। यह है सुनहरे पल कार्यक्रम। आज आपके फेवरेट स्टार, आपके फेवरेट एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर, महान कलाकार शम्मी कपूर साहब से रूबरू कराएंगे, मतलब कि उनके फिल्मी दुनिया में आपको ले चलेंगे। जबरदस्त गाने रहे उनके, उनके एक्टिंग स्टाइल, उनके करियर, इन सब के बारे में चले कुछ न कुछ आपसे शेयर करते रहेंगे रात्रि के 11 बजे तक।

हाँ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अगर किसी एक्टर ने अपनी एनर्जी, स्टाइल और अलग अंदाज से यूथ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम है शम्मी कपूर। उन्हें बॉलीवुड का याहू स्टार और रॉकिंग हीरो भी कहा जाता है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई, उस समय बॉम्बे में हुआ था। वे मशहूर कपूर परिवार से थे, जहां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री के सितारे थे। ऐसे माहौल में शम्मी कपूर का बचपन सिनेमा और एक्टिंग के बीच ही गुजरा।

पर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।

शम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर था। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत एनर्जेटिक था और बहुत ही शैतानी टाइप का था, लेकिन उनकी

जिंदगी शुरुआत में इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वैसे 1950 के दशक में की, जब उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। उनकी पहली कुछ फिल्में जैसे जीवन ज्योति, रेल का डिब्बा और ठोकर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग स्टाइल पर काम करते रहे।

उनकी किस्मत तब बदली जब 1957 में फिल्म तुम सा नहीं देखा आई। इस फिल्म ने उन्हें एक नए अवतार में पेश किया, एक स्टाइलिश, मॉडर्न और एनर्जेटिक हीरो के रूप में। इस फिल्म के बाद शमी कपूर ने अपना एक अलग ही इमेज बना लिया जो उस दौर के ट्रेडिशनल हीरो से बिल्कुल अलग था। उनका हेयर स्टाइल, कपड़े, सनग्लासेस और सबसे इम्पोर्टेंट उनका यूनिक एटीट्यूड यूथ के बीच बहुत पॉपुलर हो गया।

इसके बाद 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो एंड 1961 की सुपरहिट फिल्म जंगली ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। जंगली का फेमस डायलॉग और गाना याहू आज भी उनकी पहचान माना जाता है। उनकी फिल्मों का गोल्डन पीरियड 1960s का दशक था, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जैसे कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, प्रिंस वगैरह वगैरह।

0: शम्मी कपूर की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही अलग थी। वे सिर्फ डायलॉग बोलने वाले एक्टर नहीं थे, बल्कि अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग करते थे। उनका फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों का इस्तेमाल और एनर्जेटिक मूवमेंट उन्हें दूसरे एक्टर से बिल्कुल अलग बनाते थे। वे अपने आप को स्क्रीन पर अद्भुत फ्रीली एक्सप्रेस करते थे, जिसमें एक नेचुरल चार्म होता था। उनकी एक्टिंग में एक मस्ती, एक बचपना और एक रोमांटिक एनर्जी होती थी जो ऑडियंस को तुरंत कनेक्ट कर देती थी। वैसे शम्मी कपूर साहब की बात हो और उनके डांसिंग स्किल्स के बारे में बात न हो, उनकी डांसिंग स्टाइल बॉलीवुड में एक रिवोल्यूशन लाई। उस समय जब ज्यादातर हीरो सिंपल या लिमिटेड डांस करते थे, शम्मी कपूर ने वेस्टर्न स्टाइल को बॉलीवुड में पॉपुलर बनाया। वे स्टेज पर खुलकर जंप करते, स्पिन कर लेते और म्यूजिक के साथ पूरी तरह से ग्रूव करते थे। उनका डांस कंट्रोल्ड नहीं होता था, बल्कि बिल्कुल फ्री फ्लोइंग और एनर्जेटिक होता था। इसी वजह से उन्हें एल्विस प्रेस्ले ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
1: चाहे कोई मुझे जंग

0: मुझे जंगली कहे।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: बदन पे सितारे लपेटे हुए

शम्मी कपूर साहब ने अपने करियर में कई लेजेंडरी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जैसे आशा पारेख, सायरा बानू, शर्मिला टैगोर एंड विजयंती माला। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हर हीरोइन के साथ बहुत हिट होती थी। उनकी रोमांटिक इमेज ने उन्हें 60s का सबसे पॉपुलर हीरो बना दिया।

जैसे समय आगे बढ़ा, शम्मी कपूर ने एक्टिंग से दूरी लेना शुरू कर लिया और उनका वेट भी बढ़ गया, जिस वजह से उन्होंने लीड रोल्स कम कर दिए। लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं और बाद में सपोर्टिंग रोल्स और कैरेक्टर रोल्स में भी नजर आए, जैसे विधाता, हीरो, प्रेम रोग, तहलका वगैरह वगैरह। उन्हें उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स मिले। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा को डिफाइन करता है।

जैसे शम्मी कपूर साहब ने अपनी पर्सनल लाइफ में दो शादियां की। पहली पत्नी गीता बाली थी, जो एक मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन उनका जल्द ही देहांत हो गया। बाद में उन्होंने नीला देवी कपूर से शादी की। 2 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत मुंबई में हुई, लेकिन उनका नाम और उनकी एनर्जी आज भी बॉलीवुड के इतिहास में जिंदा है। उनकी लेगेसी आज भी नए एक्टर्स को इंस्पायर करती है। रणबीर कपूर जैसे न्यू जेनरेशन के एक्टर्स उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। शम्मी कपूर ने बॉलीवुड को सिर्फ एक्टिंग नहीं दी, बल्कि एक नया एटीट्यूड दिया, जीने का, खुलकर हंसने का और म्यूजिक को फील करने का। आज भी जब याहू आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा या कश्मीर की कली के गाने बजते हैं या फिर जंगली के गाने बजते हैं, तो शम्मी कपूर की याद ताजा हो जाती है। वे सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक इमोशन थे, एक स्टाइल थे और बॉलीवुड के सबसे वाइब्रेंट युग का एक चमकता हुआ सितारा थे। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: You're listening RM Free Radio Radio Radio.
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: कलरफुल फेस्टिवल, कलर ऑफ लव, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस। कम लेट्स एंजॉय एंड मिक्स विद द कलर्स ऑफ टुगेदरनेस एंड हैव फन।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: दूर किसी गांव में जब भूत दस्तक देता है तो बच्चा कहता है भाग जा वरना बाबा आ जाएगा।

0: कैसा लगा?
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
3: She likes to drop it low, man.

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल. बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल.
2: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ.
3: आई वाज टोटली वर्थ इट. ओके,
2: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ.

0: Come on, Chukki, now it's your turn. Come on, get up. Tell us.
1: Yeah, sing.
2: हाँ, please, बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं.
3: आके.

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ!
0: लिपट गई आके नशे में,

0: करार।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: लैला मजनू, शीरी फरहान, ही रांझा,

की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

Amen.